सुप्रभात, ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 31, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की पुरानी मांग पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मांग ली है।
1: सरकार संसद में इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
2: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन के फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन, शीर्षक है महाकवि तुलसीदास।

महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, निज कवित्व कहि लागे ने नीका, सरस होहूं अथवा अति फीका। यह मनुष्य मात्र का स्वभाव है कि उसे अपनी हर चीज अच्छी लगती है, भले वह अच्छी हो या नहीं। अपने में उन्हें कोई कमी नजर नहीं आती, आती भी है तो वे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि सभी उनकी प्रशंसा करें, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आत्म प्रशंसा अधिक अच्छी लगती है। उन्हें आत्म प्रशंसा का रोग होता है, वे आत्म प्रशंसा का कोई भी मौका जाने देना नहीं चाहते। नए व्यक्ति के सामने तो वे हवा बयार की तरह अपनी प्रशंसा करते हैं, जो गुण उनमें नहीं है उसका आरोपण भी अपने ऊपर कर लेते हैं। तत्काल तो रंग गाढ़ा बनकर चमकता है, भले बाद में असत्य का मुलम्मा उड़ जाता है। इतना भर तो एक हद तक क्षम्य भी है, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जो उनको भली भांति जानता है उनके सामने भी डींग हांकने से बाज नहीं आते। कुछ लोग आदतन ऐसा करते हैं और कुछ दूसरों पर अपना प्रभाव डालने के लिए। दोनों स्थितियों में दूसरों पर प्रभाव डालना ही मंशा है। कारण जो भी हो, यह अपने आप में एक मनोविकार है, आत्मरति है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से सुनकर

0: उन्हें आत्मतोष होता है, भले इसमें सत्याभास हो या अतिरंजना। आत्मप्रशंसा करने वालों की कोई हद नहीं होती। इसका ज्ञान उन्हें नहीं होता कि वे कहां और कब सीमा का अतिक्रमण कर रहे थे। उन्हें अपने अशिष्ट आचरण का भी बोध नहीं होता। आत्मप्रशंसा वस्तुतः आत्महीनता की उपज है। यह शालीनता के विरुद्ध आचरण है। अपनी प्रशंसा सुनने से संस्कार का क्षय होता है और संस्कार का क्षय मृत्यु के बराबर माना जाता है। यह सोचने की बात है कि जब प्रशंसा सुनने से संस्कार का क्षय होता है तब आत्मप्रशंसा कितनी गर्हित मानी जाएगी। ऐसा वे लोग करते हैं जिन्हें न तो आत्मबोध होता है और न औचित्य बोध। वे जानकर भी नहीं जानना चाहते कि उनका यह आचरण लोगों को रुचिकर नहीं है। ऐसे लोग सबकी आत्मीयता, अपनत्व, सहयोग और सहानुभूति से वंचित रहते हैं। आत्मप्रशंसक व्यक्तित्वहीन, कमजोर और खोखले होते हैं। कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उनका व्यक्तित्व अविश्वसनीय हो जाता है। ऐसे लोग योजनावीर होते हैं, नित नई योजनाएं बनाते रहते हैं। उनकी योजनाओं का कोई ठोस आधार नहीं होता। वे अपनी हवाई योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करते हैं। ऐसे लोग व्यवस्थित व्यक्तित्व के नहीं होते। व्यवस्थित व्यक्तित्व की पहचान तो यह है कि वह जो करना चाहता है उसे कभी किसी से नहीं कहता। नीति भी है कि आप जो करना चाहते हैं कभी किसी से नहीं कहिए, बल्कि उसे कार्य रूप दीजिए। बात कहने की नहीं, करने की होती है। इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है जो उसकी प्रगति में सहायक होती है। आदमी का काम ही उसका प्रवक्ता होता है, उसका काम ही बोलता है। कवि शमशेर की कविता की ये पंक्तियां इस संदर्भ में सार्थक हैं। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। जो व्यक्ति काम कम या नहीं करते और बातें ही अधिक करते रहते हैं, वे अविश्वसनीय हो जाते हैं। उनकी साख नहीं बनती, जो जीवन को सफल नहीं होने देती। आत्मप्रशंसकों में एक बुरी प्रवृत्ति यह भी होती है कि जहां वह अपनी प्रशंसा कर रहा होता है वहीं दूसरों की निंदा और आलोचना भी करने से नहीं चूकता। ऐसे लोग दूसरों का अहित जितना नहीं करते उससे अधिक अपना करते हैं। सार्थक कार्य करने के बदले जीवन को व्यर्थ करते हैं। आत्मप्रशंसा करने के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जिस व्यक्ति में हीन भावना हो आरोपण करता है, यहां क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। ऐसे लोगों में कई तरह की बुरी लतों के लगने का भी अंदेशा होता है। अक्सर वे ठगी, फरेब और उजक्केपन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में आत्मप्रशंसा एक घातक प्रवृत्ति है जिससे बचना ही चाहिए।
1: आप सुन रहे थे महाकवि तुलसीदास आज का चिंतन। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:39 और 50 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान की आज की घड़ी।
1: थ्री एट

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिक्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ, कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चाहिए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, हम आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। 7 बजे का समय होगा लोकगीतों का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। 7:20 पर आप सुनेंगे विज्ञान वार्ता, साइबर क्राइम। वार्ताकार होंगे गोपाल कुमार सिंह। 7:30 पर आप सुनेंगे गीत संगीत कार्यक्रम। 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात हिंदी। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से मॉर्निंग न्यूज, और समाचार प्रभात आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:45 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आज गायक मुकेश की आवाज में कुछ गीत। 10 बजे का समय होगा, 9 बजे का समय होगा वेद भारती का। इसे आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे आप सुनेंगे हेलो हजारीबाग कार्यक्रम हमारे हजारीबाग केंद्र से।

छह बजे आप सुनेंगी प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगी वाणी कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगी शाम भर संगीत कार्यक्रम। 7:00 प्रादेशिक समाचार सुनेंगी। 7:10 पर जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से आप सुनेंगी। 7:15 में झंकार कार्यक्रम सुनेंगी। 7:30 पर सुनेंगी और टाइम हिट कार्यक्रम। 7:45 पर

शहद कार्यक्रम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9:00 सुनेगी न्यूज एट 9, 9:15 पर सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली के अंदर, 9:30 पर भी भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, 10:00 संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, 10:00

0: श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदी चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति. ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः.
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.
0: पूर्वाहणी कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्ये दल सदस्याः नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्. केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ. तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ़ निग्रहं कर्तुं अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्. असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति. प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्. वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकताम् विशेषतया प्रतिपादितवान्. राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः इत्येषा भारत उत्तर मैसेडोनिया देशयोः आर्थिक सम्बन्धान् विस्तारयितुम् उक्तवती. उभयदेशीय उद्योगिनः व्यापारात् परं निवेश प्राविधिकी नवोन्मेषाधारित दीर्घकालिक सहकार्यं प्रवर्धयितुम् आग्रहम् अकरोत्. स्कोप्जे इत्यत्र भारत उत्तर मैसेडोनिया व्यापार मंचं संबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति या उभय देशयोः संबंध सुदृढीकरणे भारतस्य दृढ प्रतिबद्धताम् द्योतयति. सा अवोचत् यत् वर्तमान व्यापारस्य परिमाणं तस्याः संभावनायाः अंशमात्रमेव प्रतिनिधित्वं करोति. अस्य दशकस्य अन्तपर्यन्तं द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणं भवितुं शक्यते इति विश्वासः अस्ति. भाजपेति दलं ह्यः लोकसभायाः विपक्षनेतुः राहुलगान्धिनः लोककल्याणमार्गे विरोधप्रदर्शनस्य निन्दामकरोत्. तेन प्रदर्शिताचरणं पूर्णतया अशोभनीयं निन्दनीयं चेति वर्णितवान्. नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् भाजपेति दलस्य अध्यक्षः नितिननवीनः उक्तवान् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा अस्ति, भारतस्य राजनैतिक इतिहासे कृष्ण दिवसेति वर्णितवान्. विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य द्विदिवसीय फिलीपींस देशस्य यात्रायै मनीला इत्यत्र गमिष्यति. तत्र असौ आसियान इत्येतस्य अंतर्गतम् आयोजितेषु विदेशमंत्रीस्तरीयोपवेशनेषु भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः.
2: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग. लीजिए सुनिए सबसे पहले लाल बिहारी साहब की आवाज में इस गीत को उसके पहले सुनवाते हैं जरूरी संदेश।

0: लोक रंग या आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है विज्ञान वार्ता, विषय है साइबर क्राइम, वार्ताकार है गोपाल कुमार सिंह।
1: नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह है और आज मैं साइबर अपराध के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो 1980 के दशक से ही यहाँ पे अपराध जारी है, लेकिन आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर आधुनिक अपराध हो रहा है तो वो है साइबर अपराध। और साइबर अपराध से हर वर्ग के लोग, हर किस्म के लोग बड़े ही परेशान चल रहे हैं। साइबर एक ऐसा चीज ही है जिससे हर लोग परेशान है। आखिर ये साइबर क्राइम आखिर है क्या? साइबर क्राइम वो अवैध गतिविधियों को कहते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। इन अपराधों के माध्यम से अपराधी व्यक्तिगत जानकारी चुराने, वित्तीय धोखाधड़ी करने या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और खास करके जिनको कंप्यूटर में ज्यादा नॉलेज होते हैं वो लोग खास करके साइबर

0: उसका मजबूत पासवर्ड का हमेशा उपयोग करें। अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए जटिल और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं, जिसमें अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण हो। अपने सिस्टम, ब्राउजर और सुरक्षा सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें, ताकि नए सुरक्षा पैच लागू हो सके और संभावित खतरों से बचा जा सके। इंटरनेट सुरक्षा सुइट का हमेशा उपयोग करें। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का हमेशा उपयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय वीपीएन, जी हाँ, वीपीएन का उपयोग करें, ताकि आपका डाटा सुरक्षित रहे और साइबर अपराधियों से भी सुरक्षित रहे। हमेशा ध्यान दें कि एपीके फाइल को कभी भी अपने फोन में, लैपटॉप में या फिर किसी भी डिजिटल चीज में कभी भी डाउनलोड ना करें। ये साइबर अपराधियों की एक चाल होती है। हमेशा अपने फोन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। सुरक्षित होम नेटवर्क का हमेशा सेटअप करें। हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखें। महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें, ताकि अन्य साइबर हमलों को दौरान डेटा की हानि ना पहुंचाया जा सके। साइबर सुरक्षा जागरूकता हमेशा बढ़ाएं। स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की ऑनलाइन अननोन लिंक पे क्लिक कभी ना करें। इन उपायों को अपनाकर आप साइबर अपराध के खतरों से अपनी और अपने परिजनों को सुरक्षित सुनिश्चित कर सकेंगे। भारत सरकार में साइबर अपराध की वर्तमान स्थिति। गृह मंत्रालय की 2023 से 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से मार्च 2024 के बीच में भारत साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 2.16 करोड़ शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें कुल 14,570 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर अपराधियों की गतिविधियां कितनी व्यापक हो चुकी हैं। साइबर अपराध की रोकथाम और समाधान के लिए सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने और नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको हम लोग cybercrime.gov.in कहते हैं, यह पोर्टल पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह उपयोगकर्ता अनुकूल मंच हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसे अपराध की रिपोर्टिंग में सहायक है। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए यह हेल्पलाइन उपलब्ध है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल और हेल्पलाइन को उपयोग करके हम साइबर अपराधों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। साइबर अपराधी ज्यादातर करके अपना शिकार छोटे बच्चों या फिर महिलाओं या फिर बुजुर्ग को बनाते हैं। वह जानते हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल में ऐसा ऐसा एक गेम डालते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, ऐसा उन्हें बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप 2 रुपए लगाओ, 4 रुपए कमाओ, ऐसा ऐसा करके बच्चों को ज्यादातर करके शिकार बनाते हैं। खास करके महिलाओं को भी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे ठगी करने का मामला इसमें आता है। इसमें ज्यादातर के एपीके फाइल जो होता है उनमें क्लिक करवा के उनका सारा डेटा हैक कर लिया जाता है। धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे विज्ञान वार्ता, विषय था साइबर क्राइम। वार्ताकार थे गोपाल कुमार सिंह। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस आपसे कुछ ही क्षणों में।

0: पेश है कार्यक्रम की संगीत। गीत संगीत सुनने से पहले लीजिए सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: लीजिए सुनिए फाल्गुनी पाठ।

रहता हूँ। इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानिया तो हूँ। जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन।

थी अल्ताफ राजा की आवाज में इस गीत को। इसी के साथ की संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवार में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार

0: छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
2: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंशकरुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में

0: मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक

0: पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Hooda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: Our correspondent covering the President's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security and startup ecosystems. The President invited North Macedonia to join initiatives such as International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WEBS to be held in India next year. This is Subhashree Mahapatra from Skopje, North Macedonia.
2: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS Health

0: over killing of four Indians, writes the Economic Times. A lead, a headline in Hindustan Times writes, AI to drive planning audits, fraud detection under Viksit Bharat G. Ramji, humans to take final call. And finally, Financial Express mentions about a QS survey declaring Delhi the most affordable for students in the world, doing well on employer demand as well. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Drouthi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। परीक्षाओं में कथित अनियमितता और प्रशासनिक दबाव के बीच जेपीएससी चेयरमैन एल कियांगते ने दिया इस्तीफा। सीआईटी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लिए। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक। गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए कैबिनेट ने एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को भी दी स्वीकृति। वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर तीसरी और अंतिम चुनाव पाठशाला का आयोजन। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तंत्र के असर से राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट। अगले 5 दिनों तक लगातार होगी वर्षा। और सुब्रतो कप फुटबॉल के अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्गों में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल बना चैंपियन। अंडर 15 बालक वर्ग में कोल्हान ने जमाया खिताब पर कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोपों के बीच आयोग के अध्यक्ष एल कियांगते ने कल रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्य सरकार के कड़े रुख के बाद सीआईडी की टीम ने जेपीएससी कार्यालय और संबंधित परीक्षा एजेंसी पर छापेमारी की थी। सीआईडी ने जांच के सिलसिले में आयोग के कार्यालय से परीक्षाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल और कागजी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 6 से 12 अगस्त तक विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने सहित 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति से छूट दे देने का निर्णय लिया है। सुदूर क्षेत्र के मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने को भी हरी झंडी मिली है।
7: हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर भाड़े पे लिया जाएगा। इसका वार्षिक जो लागत आ रहा है 9,45,00,000 रुपए। इसमें जैसे बहुत दूरस्थ एरिया में जहां सड़क नहीं पहुंच सकता, जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकता, तो वहां के पेशेंट को हॉस्पिटल लाने के लिए होगा। और दूसरा, मान लीजिए एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना, उसके लिए भी यूज होगा।

0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों और अन्य समूहों द्वारा किए जा रहे सतत आंदोलन पर अपनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने वर्तमान देशव्यापी परिस्थिति को गंभीर और चिंताजनक बताते हुए कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को हर घटनाक्रम पर संवेदनशील सोच के साथ ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम जनमानस से इस दौर में सूझबूझ और संवेदनशीलता बनाए रखने की अपील की है।
1: काफी गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई हैं, कुछ ताकत ऐसे मजबूत हो गई हैं, कुछ हो रहे हैं जिसके साथ चंद दिनों में चंद घंटों में वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग संघर्ष आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के अलग अलग घटनाएं भी देखने को मिलेंगी।
0: राज्य में सिनेमाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए आज झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में होने वाले इस समझौते से राज्य के पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। एसआईआर अभियान के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार आज बूथ लेवल ऑफिसर और बूथ लेवल एजेंट की यह तीसरी और अंतिम महत्वपूर्ण बैठक है। इसके माध्यम से मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने का लक्ष्य है। रांची के अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बहुचर्चित एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ विक्की सहित सभी 10 दोषियों को 9-9 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सजा के साथ साथ सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने रांची में लोकभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि छात्रों, युवाओं और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
2: पूरा एजुकेशन सिस्टम्स को बर्बाद किया और यूनिवर्सिटीज में आरएसएस लोगों को वाइस चांसलर लाया, इसीलिए राहुल गांधी जी एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ रहे। और आज राहुल गांधी जी ने हॉस्पिटल जाके छात्रों को लीडर्स को परामर्श किया, उसके बाद पार्लियामेंट में ये इशू रेज किया, प्राइम मिनिस्टर के पास जाके इशू पर वो प्रोटेस्ट कर रहे, मगर राहुल गांधी जी को और सही एमपीस और एक्स चीफ मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट किया।
0: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने लोकभवन के समक्ष कांग्रेस द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के नाम पर भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से मांग की कि वह राज्य में परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों पर प्रदेश के युवाओं के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
3: तो सरकार ने बार बार जो जेपीएससी, जेएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही बच्चों की, युवाओं की जो बहाली इस सरकार द्वारा की जा रही थी जिसमें 19 बच्चों की मौत हो गई, कांग्रेस क्यों उस मुद्दे पर मौन रही? लोक भवन के सामने इन लोगों ने धरना देने का काम किया है। उस धरना में भी ये भी बात स्पष्ट करने का काम करे कि झारखंड के युवाओं के साथ उनके भविष्य की हत्या करने का काम किया है।
0: राज्य में अगले 5 दिनों तक लगातार भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो रहा है। इस मॉनसूनी बारिश से राज्य में जारी 30% पानी की कमी में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है।

0: सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, साथ साथ में जो मध्य दक्षिणी से सटा हुआ जो पश्चिमी इलाका है वहां पर आपको एक आध जगह पर भारी बारिश देखने को मिलेगा। तो अभी बारिश की स्थिति ठीक है और जिनके भी खेत में पानी हो गया है तो अच्छा टाइम है, अगर आपका बिहन तैयार है तो रुपया आप कर सकते हैं।
1: रांची के खेलगांव और बीआईटी मेसरा मैदान में 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। अंडर 15 बालक वर्ग में संथाल परगना ने कोल्हान को 6-1 से हराया। वहीं अंडर 17 बालिका और बालक दोनों वर्गों में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल चैंपियन बना। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने बालिका वर्ग में उत्तरी छोटानागपुर को 2-1 से और बालक वर्ग में कोल्हान को 4-0 से शिकस्त दी। ओमान में खेली जा रही यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से करारी शिकस्त देकर धमाकेदार जीत दर्ज की है। झारखंड की उभरती स्टार संदीपा कुमारी ने मैच के दूसरे, छठे और 20वें मिनट में शानदार फील्ड गोल ताककर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। उनके साथ राज्य की पुष्पा मांझी और नीलम टोपनो ने भी बेहतरीन गोल किए। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी छापेमारी और आयोग अध्यक्ष के इस्तीफे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है जेएसएससी में ब्लैकलिस्टेड एजेंसी ले रही थी जेपीएससी की परीक्षाएं, सीआईडी ने मारा छापा, देर रात अध्यक्ष का इस्तीफा। दैनिक भास्कर ने लिखा है राज्य के 1000 स्कूलों में एआई से होगी पढ़ाई, 7 स्टूडियो से चलेंगी वर्चुअल क्लासेस। हिंदुस्तान के शब्द हैं चतरा एसपी आवास के सामने विधायक पुत्र के बॉडीगार्ड की गोली मारकर हत्या। दैनिक जागरण लिखता है सुदूर क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बहाल होगी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। परीक्षाओं में कथित अनियमितता और प्रशासनिक दबाव के बीच जेपीएससी चेयरमैन एल खियांगते ने दिया इस्तीफा, सीआईडी ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड कब्जे में लिए। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक, गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए कैबिनेट ने एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की भी दी स्वीकृति। वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण के साथ आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर तीसरी और अंतिम चुनाव पाठशाला का आयोजन। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तंत्र के असर से राज्य के कई जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, अगले 5 दिनों तक लगातार होगी वर्षा। और सुब्रतो कप फुटबॉल के अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्गों में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल बना चैंपियन, अंडर 15 बालक वर्ग में कोल्हान ने जमाया खिताब पर कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, आज 22 जुलाई है। आज ही के दिन प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म हुआ था 1923 में दिल्ली में। उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था और उन्हें उनके दर्द भरे और सुरीले गीतों के लिए जाना जाता है। राज कपूर की आवाज कहे जाने वाले मुकेश ने 27 अगस्त 1976 को दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में कुछ चुनिंदा हिट, सुपरहिट फिल्मी नगमे।

आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में कुछ गीत। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे बोध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और प्रीतम का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए अख्तर चन्नाल की आवाज में। फिल्म का नाम फैंटम।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: हेट स्टोरी 3। इस फिल्म का गीत अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाजों में, रश्मि विराग ने इसे लिखा है, अमाल मालिक का संगीत।

आपने ट्यून किया है विविध भारती और सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत। अर्श किंग की आवाज साथ दिया है शशा तिरुपति ने। इस गीत को लिखा है अराफात महमूद और तनिष्क बागची ने, संगीत तनिष्क बागची का।

एआर रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश की आवाजों में अभी आपने सुना ओके जानू फिल्म का ये गीत, गुलजार के बोल थे और संगीत था एआर रहमान का। इस गीत के साथ ही आज के इस चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र।

0: सारे रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा।

सपने। मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में

मुकेश के गाने आते चले गए, यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

0: नहीं।
1: अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना

हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की। लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल है।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

0: जानी।
1: जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना न गुन

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज है, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: जाना कहां।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।

आज महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

हेलो हजारीबाग कार्यक्रम सुनने वाली आप तमाम दोस्तों को रानी का प्यार भरा नमस्कार जोहर। दोस्तों बरसात के मौसम में अक्सर भूले बिसरे प्यार भी जाग जाता है। मौसम सुहाना होते ही प्यारी प्यारी यादें, प्यार भरी बातें हमें सताने लगती है। जैसे बीते लम्हों को बस ऐसे ही याद करते रहें और बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों को देखते रहें, तभी तो दीवाने के कहते हैं, पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, अब याद आते हो तो बारिश होती है।

दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते बढ़ती जनसंख्या, घटता भूजल स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट गहराता जा रहा है, जिससे जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा जल संचयन, पानी की बर्बादी रोकना और जल स्रोतों का पुनरुद्वार करना आज की सबसे बड़ी और अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। हमें जल बचाकर चलना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नल को खुला छोड़ देते हैं और जल की बर्बादी करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, सतर्क रहें। और कार्यक्रम में इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और भी बातचीत

0: गीत हम करेंगे, फिलहाल सुनते खूबसूरत सा ये गाना।
1: ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें।

दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सुविचार के साथ। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है, भरोसा। बदला लेने की चाह नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले।

0: दोस्तों हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। भारत में कानून के तहत डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। यदि कोई खुद को पुलिस, सीबीआई या कस्टम अधिकारी बताकर वीडियो कॉल पर डराए, पैसे मांगे या ओटीपी पूछे तो वह 100% एक साइबर फ्रॉड ठगी है। इससे बचने के लिए तुरंत कॉल काट दें, कोई ओटीपी या पैसे ट्रांसफर न करें और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करें।
1: प्लीज सब्सक्राइब अजीज के नगमे।

0: श्रोताओं, मौसम के बारे में भी थोड़ी हम आपको जानकारी दे दें। हजारीबाग में आज 22 जुलाई 2026 को आसमान में बादल छाए रहने और लगातार बारिश के साथ तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई जिलों की तरह यहाँ भी मानसूनी गतिविधियां सक्रिय है। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपके साथ मिलकर सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं साल की 4 साल के इंतजार के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच एक बार फिर लौट आया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा। 12 साल बाद ग्लासगो दूसरी बार इस बहु खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। आगे हम आपको बता दें, करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जापान ओपन सुपर 750 का खिताब जीतकर शानदार वापसी करने वाली भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने अपनी सफलता का बड़ा श्रेय भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली को दिया है। सिंधु ने खुलासा किया है कि कठिन दौर में विराट की एक सलाह ने उनकी सोच बदल दी और उसी ने उन्हें फिर से चैंपियन बनने की राह दिखाई।

0: इसी गीत के साथ हेलो हजारीबाग कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। यह संपन्न होती है ये सभा। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती की कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।
1: सबसे पहला जो गीत है सुनिधि सी, इस एल्बम का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, गीत और संगीत ललित का।

हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत आपको सुनवाते हैं, समीर के बोल, जवाहर वत्तल का संगीत और एल्बम का नाम सजना।

मिताली सिंह की आवाज में ये गजल आइए सुनते हैं। शब्दकार इब्राहिम अश्क, संगीत भूपिंदर सिंह का, और एल्बम कुछ इंतजार है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज़ में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष।

अगली जो आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पामेला जैन की आवाज में मनोज दर्पण का लिखा हुआ ये गाना, बबली का संगीत, एल्बम मेरा घूंघटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जानमान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवान को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ दो गाने। वीर दुर्गादास फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, भरत व्यास के बोल, एस एन त्रिपाठी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: हाथ रखकर वो जा रहे हैं देखो दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर चलने वालों।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।

हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। तीसरा कौन, इस फिल्म का गाना बोल है आनंद बख्शी के, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।

0: बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
1: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनिए,
4: लीजिए अब सुनिए शोर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाजों में, संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना सावन फिल्म से है। प्रेम धवन के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

0: हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ युगल गाने। पूनम की रात, इस फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, सलील चौधरी का संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आज की जो इबारत है, विविध भारती के फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट की है, जो आप लोगों ने पढ़ी है, उस इबारत को हम यहां पढ़ के आपको सुनाते हैं। इंसान अपने जीवन में कई परिस्थितियों का सामना करता है, कभी सफलता, कभी संघर्ष, कभी असफलता। अंतिम परिणाम तो बाद में आता है, पर इंसान की पहचान उसके धैर्य और साहस से होती है। हर ठोकर के बाद भी चलते रहना और व्यक्तित्व को गढ़ना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब कोई हृदय तोड़ दे, जब कोई चांदी की दीवार छोड़ दे, जब दोस्त दोस्त ना रह जाए, जब बहारें भी चमन लूट लें, जब वक्त भी वफा करना छोड़ दे, जब समझ में ना आए कहाँ जाए, तब एक जादुई रूहानी आवाज हमारा दामन थाम लेती है। उस आवाज का दामन थामे हम अपने एहसासों को बड़ी शिद्दत से बयां करते हैं और कहते हैं, भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, क्योंकि हमें ये पता है दुनिया बड़ी है संग दिल। बताइए कौन सी है वो आवाज जिसने हमें जिंदगी के मायने समझाए और मुश्किल समय में हमें आवाज दी। जी हाँ, आपको अपने बारे में भी बताना है कि आपके लिए वो कौन सी आवाज है। एक हमारे साथी ने बहुत प्यारी बात लिखी है, लिखते हैं कि मुकेश जी की आवाज दर्द की वो स्याही थी जो कागज पर नहीं सीधे दिल पर उतर जाती थी। वो न ऊंचे सुरों के जादूगर थे, न शब्दों के बाजीगर, वो बस सच गाते थे। उनकी आवाज में वो थकान थी जो हर टूटे हुए इंसान के भीतर होती है, वो सन्नाटा था जो बिछड़ने के बाद कमरे में रह जाता है। उनके गाए दर्द भरे गीतों को सुनते हुए लगता है जैसे कोई अपना बहुत पास बैठकर बिना शिकायत किए बस अपनी कहानी सुना रहा हो। मुकेश जी ने दर्द भरे गीतों में खुद को जिया है, इसीलिए दशकों बाद भी जब रात भारी हो जाती है, जब आंखें भिगो देती है, जब सबसे पहले उनकी आवाज कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं हूं ना। जी हाँ, यही आपको बताना है कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, कई बार परिस्थितियां बहुत नकारात्मक होती है, हम परेशान होते हैं, लेकिन एक आवाज़ होती है या एक व्यक्ति होता है जिसकी आवाज़ सुन के, जिसकी बातें सुन के, या फिर जिसका हमारे सिर पर हाथ रख देना ही काफ़ी होता है और वो ये कहता है कि मैं हूं ना, आप धैर्य रखिए, और उनकी आवाज़ सुनकर मन को बड़ा संबल मिलता है। आप बताइए कि आपके जीवन में वो कौन सी आवाज़ है, वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा शख्स है जिनके वो प्यारे शब्द सुन के, जिनके मन को बहुत सांत्वना देने वाले जो शब्द होते हैं वो मिलते हैं और आपके मन को बहुत संबल मिलता है। चलिए पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना सुनते हैं, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये भी आपको बताना है।

क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि जब मुश्किल हालात हो तब मेरे पास आना और मेरे पास वो सुकून मिलेगा जो तुम ढूंढ रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई आवाज़ आपके पास है तो उसे हमें बताइए। मनोज कुमार और सायरा बानो पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी की ये बात है कि निराशा के इन घने बादलों के बीच जब जिंदगी से भरोसा उठने लगता है तब रेडियो के किसी कोने से एक बेहद दर्द भरी रूहानी और मखमली आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ हमारे टूटते हौसले को संभालती है और गुजरे जमाने की भूली हुई यादों को ताज़ा कर देती है। भले ही ये दुनिया बड़ी है संगदिल, लेकिन उस आवाज़ का जादू हर गम को सहने की ताकत देता है। वो दर्द के बादशाह और जज्बातों के जादूगर कोई और नहीं, हमारे अजीज मुकेश जी हैं, जिनकी आवाज ने हर तन्हा दिल को जीने का सहारा दिया है। एक साथी ने ये बात लिखी कि आज की इबारत के कण कण में मुकेश जी समाये हुए नजर आ रहे हैं। दर्द भरे करुण रस से परिपूर्ण गीतों के साथ मुकेश जी के कुछ और भी गीत हमें सुनने को मिलेंगे। जी हाँ, गीत कई सारे हैं। और इसके पहले जो कार्यक्रम था यादों की महफिल, उस कार्यक्रम में हमने आपको लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत सुनवाए बहुत सारे, जिनमें बहुत हंसते खेलते गीत थे। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत हैं जो हमारे दर्द से जुड़े हुए हैं या हमारे दिल के या हमारे समय के बहुत मुश्किल हालातों से जुड़े हुए जो गीत हैं वो आपको सुनाई देंगे। चलिए अगला गाना, विश्वास फिल्म का गाना, मुकेश जी की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, जितेंद्र और अपर्णा सेन पर फिल्माया गया।

प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी विवाद के दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा, राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाएंगे कठोर कदम। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता सड़क पर। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सीबीआई जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने रिम्स में डिजिटल मैमोग्राफी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और ओरल सर्जरी यूनिट का किया उद्घाटन। नव नियुक्त चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड में पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आज जेएफडीसीएल और कोलकाता के सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट के बीच अब से थोड़ी देर बाद होगा एमओयू। और रांची में 135वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुफ्त प्रवेश पत्रों का वितरण आज से शुरू। जिला प्रशासन और

0: नगर निगम ने सुरक्षा व नागरिक सुविधाओं का विशेष खाका किया तैयार। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा विवाद में सीआईडी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को प्रभावी बनाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
1: न्याय सिर्फ सुनाना नहीं होता है, न्याय करते दिखना भी, क्योंकि ये सिस्टम में कुछ एक्टिविटीज हैं जहां छुपे छुपे लोग हैं, बरसों से जगह जगह पर बैठ करके गलत गतिविधियों में चल रही, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है और इसी दौरान हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके उनके चीजों को भी आगे बढ़ाना है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आज भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। इस कड़ी में आज भाजयुमो कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। थोड़ी ही देर में वे जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए जेपीएससी कार्यालय के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग मामले में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चेयरमैन के इस्तीफे और 8 लोगों को हिरासत की आयोग में गड़बड़ी का स्पष्ट संकेत बताया। श्री सेठ ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताते हुए युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए इस पूरे प्रकरण की सीआईडी जांच कराने की मांग की है। रांची स्थित रिम्स में आज मरीजों की सुविधा के लिए कई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अस्पताल में डिजिटल मैमोग्राफी मशीन, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और ओरल सर्जरी यूनिट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मरीजों को लंबी कतारों से राहत देने के लिए ऑनलाइन ई सुश्रुत पेमेंट गेटवे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा भी शुरू की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपे और राज्य के चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। देहदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की पैदल यात्रा पर निकले जयपुर उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चंद्रकांत चौहान कोडरमा पहुंचे। 27 अप्रैल को जयपुर से शुरू हुई इस 11,000 किलोमीटर की यात्रा का उद्देश्य लोगों को अंगदान और देहदान के महत्व को समझाना है। चंद्रकांत चौहान ने स्वयं भी देहदान का संकल्प लिया है ताकि चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों को शोध में मदद मिल सके।
2: कोई आदमी डेथ हो जाती है, उसके बाद हम उसकी बॉडी को डिस्पोज करते हैं, कोई उसको दफन करता है, कोई जलाता है, कोई अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रक्रिया अपना रखी है। मैं ये मुहिम चला रहा हूँ, ये किसी धर्म से प्रेरित नहीं है। आफ्टर डेथ आप किसी भी एनाटॉमी डिपार्टमेंट से संपर्क करके उसमें बॉडी को डोनेट कर सकते हैं, तो किसी जरूरतमंद के काम आ जाए।
0: रांची में 1 सितंबर 2026 से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सुरक्षा, चिकित्सा और अभ्यर्थियों के लिए वाटरप्रूफ शेल्टर सहित सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आईआईटी आईएसएम धनबाद में आज से सेल बोकारो के अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। डेटा एनालिटिक्स फॉर प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य महाप्रबंधक अनीमा कुशवाहा ने किया। इसमें करीब 30 वरिष्ठ अधिकारी आधुनिक सॉफ्टवेयर के उपयोग की बारीकियां सीख रहे हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में सिनेमाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए अब से थोड़ी ही देर बाद झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के बीच एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में होने वाले इस समझौते से राज्य के पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। खूंटी पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र के पेलोल पुल के पास एक 18 चक्का ट्रक ट्रेलर से 18 किलो 400

0: में भेज दिया है।
1: साहब, हमारे दल के द्वारा दो लोगों को रोक के उनसे जब तलाशी ली गई तो उनके पास ब्राउन शुगर बरामद हुआ। 7.4 ग्राम ब्राउन शुगर मिला और एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन और उनका जो एक पल्सर कंपनी का जो मोटरसाइकिल था वो जब्त कर लिया है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 556 अंक गिरकर 76,914, जबकि निफ्टी 148 अंक फिसलकर 24,040 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,32,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची में पहली बार आयोजित होने जा रहे प्रतिष्ठित 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में मैचों को देखने के लिए मुफ्त प्रवेश पत्रों का वितरण आज से शहर के विभिन्न काउंटरों पर शुरू हो गया है। रांची में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी गई हैं। खेल प्रेमियों के उत्साह को देखते हुए स्टेडियम की सुरक्षा, खिलाड़ियों के ठहरने, यातायात प्रबंधन और शहर की साफ सफाई के लिए विशेष खाका तैयार किया गया है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि डूरंड कप के सफल आयोजन के लिए स्वच्छ वातावरण, पेयजल और नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है।
2: साफ सफाई को लेकर तो ऑब्वियस है, जो लोग कर सकते हैं फॉगिंग वगैरह करें, जो कि सामने अगर मैच है तो ऐसा नहीं हो कि खराब एक्सपीरियंस हो। बाकी अन्य विंग्स जो हैं, जैसे खेल विभाग है, जिला प्रशासन है, उससे भी समन्वय स्थापित करके जो कार्य करना है वो करेगी। यहाँ पे लाइट वगैरह लगाने की पूरी व्यवस्था हो सकता है, वो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य जो भी सप्लीमेंट्री मदद जिला प्रशासन या खेल विभाग के द्वारा जो मांगा जा रहा है वो भी हम लोग अति शीघ्र उपलब्ध कराते जा रहे हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी विवाद के दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा, राज्य की शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए जाएंगे कठोर कदम। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता सड़क पर, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की सीबीआई जांच की मांग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स में डिजिटल मैमोग्राफी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर और ओरल सर्जरी यूनिट का किया उद्घाटन। नवनियुक्त चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। झारखंड में पहले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आज जेएफडीसीएल और कोलकाता के सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट के बीच अब से थोड़ी देर बाद होगा एमओयू। और रांची में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुफ्त प्रवेश पत्रों का वितरण आज से शुरू। जिला प्रशासन और नगर निगम ने सुरक्षा व नागरिक सुविधाओं का विशेष खाका किया तैयार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हमारे कि जब मैंने कक्षा 10वीं परीक्षा दी थी, लास्ट पेपर के दिन पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा निरंतर विविध भारती सुना करते थे और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना करते थे। आज लगभग 30 वर्ष हो गए, मैं भी निरंतर रूप से विविध भारती सुनता हूं और जब कभी परेशानी में होता हूं तब विविध भारती में एक हिम्मत दिलाने वाला गाना बज जाता है और कहीं से यह सुनाई देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे पास मुकेश जी के गाए गीतों की किताब हुआ करती थी जिसमें से हमने सारे गीत याद कर लिए थे, तो उनके तो सारे गीत ही हमारे फेवरेट हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, पैसे का महत्व धन की महिमा बखान करता है। यह गीत बता रहा है कि प्रेम में भी पैसे ने सेंध मारी की है, पैसे के खातिर लोग कैसे दिल तोड़ देते हैं और अलग दुनिया बसा लेते हैं।

और एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी के गाने की बात है तो दिल की गहराइयों में समा जाता है वो जो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुकेश जी का व्यक्तित्व उनके गायन की तरह ही अत्यंत सरल, विनम्र और सहज था। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे। उनके उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे सहकर्मियों, संगीतकारों और अपने प्रशंसकों के प्रति आत्मीय व्यवहार रखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनके व्यक्तित्व को और अधिक महान बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देवर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका ही आपको बताना है।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज़्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी जिंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज़ का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूँ। दर्द में डूबी वो आवाज़ जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा, इस फिल्म का गाना, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मैं कभी मुकेश जी के गाने पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब गाने सुने तो पता चला कि इन लोगों को या इन गानों को लेजेंड क्यों कहते हैं। इन लोगों के गाए गाने सीधे दिल के गहराई में उतरते हैं। और एक गाना जो हमने देवर फिल्म का सुनवाया था, बहारों ने मेरा चमन लूट के, तो एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि वाह क्या बोल है, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती का नाम क्यों दे दिया, अप्रतिम गाना है। और इसी गाने के बारे में हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि देवर फिल्म की ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, ये इंसानी रिश्तों की मजबूरी, किस्मत के क्रूर खेल और निस्वार्थ प्रेम के बदले मिले धोखे को दर्शाता है। ये गाना सिखाता है कि जब इंसान के पास अपनी बेबसी जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो संगीत का सहारा लेता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुकेश जी 1972 में हमारे शहर कटक में आए थे, बाराबाती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, नितिन मुकेश छोटे थे वो भी आए थे और गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं ये गाना उन्होंने गाया था और ये बातें इन्हें याद आ रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज यानी सादगी, सच्चाई और दर्द का ऐसा संगम जो सीधे रूह को छू जाए। उन्हें विरह के गीतों का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के भी उनकी गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं छोटी बहन फिल्म का गाना। मुकेश की आवाज है, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन से कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

0: ऐसी मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

रहमान पर फिल्म आया गया ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि मुकेश की गायकी कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं था, उनके हर गीत में शब्दों का उच्चारण इतना साफ और संजीदा होता था कि हर शेर एक कविता की तरह कानों में रस घोलता था। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एकदम अंदर तक धसे हुए हैं दिल में ये सारे गाने। हम लोग के घर में लॉन्ग प्लेयर था रिकॉर्ड, मुकेश जी का हर तरह के गाने का कलेक्शन हुआ था होता था, बहुत अच्छे लगते हैं उनके ये गाने। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि राज कपूर के रूप में मुकेश को सिनेमा का बेहतरीन साथी मिला, आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी जैसे गीतों में उन्होंने आम आदमी, उसके संघर्ष और उसकी जिंदा दिली को अपनी गायकी से एक मुकम्मल अंदाजे बयां दिया। राज कपूर ने शायद इसीलिए कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किसने लिखा है ये गाना, ये आप हमें बताइए।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आपने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी की राह में कभी ठोकरें मिलती है, कभी बहारें, कभी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी वक्त वफा करना भूल जाता है। ऐसे में कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं, रूह तक पहुंचती है। वे हमारे दर्द को शब्द देती है, हमारी यादों को सहलाती है और अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाती है। ऐसी ही ये आवाज़ें। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर जी एक ऐसी आवाज़ का नाम है जो सीधे दिल में उतर जाती है। द वॉइस ऑफ द मिलेनियम।

और द मैन विद द गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी की आवाज में जो दर्द, सादगी और एक अनूठी कसक थी, मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज का ठहराव और उर्दू की बेहतरीन अदायगी थी। मुकेश जी अपने गीतों में जीवन के दर्शन, प्यार की तड़प और आशावादी दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोया था। चलिए संजोग फिल्म का गाना, संगीत किसका है यह आपको बताना है। दो कलाकार हैं, प्रदीप कुमार और शुभा खोटे, उन पर फिल्माया गया ये गाना है।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो केवल एक गीत नहीं गाते थे बल्कि सुनने वाले के दिल का बोझ हल्का कर देते थे। जब वे गाते हैं चांदनी आई घर जलाने तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें भी उस वक्त इंसान को तकलीफ दे रही है। ये आवाज हर अकेले और उदास इंसान को ये तसल्ली देती है कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको आपको मिल ना सके सुबह के उजालों में। कुछ आवाज़ ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है वो आवाज़ मुकेश की। एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज़ थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झड़ती वो आवाज़ हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज़ हमें अपने साथ झूला झूलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज़, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं, नदी में जितना पानी है, वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज़ का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन, संघर्ष और संगीत के रूहानी असर का एक अत्यंत भावुक और जीवंत चित्रण है। ये सच है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर ठोकर के बाद संभलना ही जीवन है। जब इंसान तन्हाई, छल और वक्त की बेवफाई से टूट जाता है, तब शब्द और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त केवल संगीत और एक रूहानी आवाज ही दिल को तसल्ली दे पाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बंदिनी फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, नूतन पर फिल्माया गया। संगीत किसका है आपको बताना है।

दिल को सीधे लगती है मुकेश जी की आवाज़, बिल्कुल सीधी सादी सादगी सच्चाई भरी आवाज़। कौन भला न होगा जो मुकेश जी की आवाज़ पर मोहित ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान की असली पहचान उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौती भरे समय उसके जीवन का हिस्सा होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियों में भी असली पहचान व्यक्ति के धैर्य और संयम से होती है। इसमें सफलता मिले या असफलता उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। समय कम है, चलिए एक गाना आपको सुनवाते हैं। बंबई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है ये आपको बताना है।

अब हमें भी चलना होगा, समय जो है हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा है कि कुछ और बातें की जाए या और गाने सुनवाए जाए। ये जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव आनंद और सुचित्रा सेन हैं, और आपने बहुत प्यारी बातें फेसबुक पर लिख करके भेजी, इसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज 22 जुलाई है, कैलेंडर के पन्ने पर एक आम सी तारीख, लेकिन इतिहास के झरोखों में झांकें तो हमारे देश के लिए ये बहुत गौरवशाली और महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि आज ही के दिन 1947 में भारत की संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। इसमें तीन रंग थे, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद रंग की पट्टी में नीले रंग से अशोक चक्र बना था, जिसमें 24 तीलियां थीं जो धर्म और कानून का प्रतिनिधित्व करती थीं। राष्ट्रध्वज तिरंगे का वही स्वरूप आज भी मौजूद है और ये तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है।

इतिहास के गलियारों में भटकें तो पता चलता है कि सबसे पहले देश के राष्ट्रीय ध्वज की पेशकश 1921 में महात्मा गांधी ने की थी, जिसमें बापू ने दो रंग के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात कही थी। इस झंडे को मछलीपट्टनम के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। दो रंगों में लाल रंग हिंदू समुदाय और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बीच में था गांधी जी का चरखा, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत का झंडा अपने देश में बने कपड़े से बना है। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते चले गए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने इस झंडे को डिजाइन किया था। 1923 में पहली बार इस तिरंगे का प्रयोग हुआ था नागपुर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में। इस दौरान हजारों लोगों ने इस ध्वज को अपने हाथों में थामा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में इस ध्वज का इस्तेमाल किया था। आज हम अपने घरों और दफ्तरों में तिरंगा फहरा सकते हैं, इस बात की अनुमति है। तिरंगा भारत के गौरव का प्रतीक है और हम इस तिरंगे को सलाम करते हैं।

साल 2002 से इंडियन फ्लैग कोड में बदलाव किए गए हैं। अब कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी दिन अपने घर, दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर में सम्मान के साथ राष्ट्रध्वज फहरा सकता है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और लोगों ने घर घर में तिरंगा फहराया और अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजाद हैं। जब किसी खेल में भारत के खिलाड़ी जीतते हैं तो वो तिरंगा उड़ते हैं या पूरे मैदान में तिरंगा लहराते हुए दौड़ते हैं। ये भारत के गर्व को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे काम करें जिससे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाए और हम तिरंगा लहरा

ध्वज दिवस यानी फ्लैग डे पर केंद्रित थी आज की त्रिवेणी। हर साल 22 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। अब यूनुस खान को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने

0: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया। उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
1: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
1: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
3: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
1: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय,

0: आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदम्बा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पहला जो गीत है ये उसने कहा था, इस फिल्म का गाना है। मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

0: ये प्यार से।
1: परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीबी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार, इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल संगीत शिवराम का।

0: रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ MOU किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में आज भाजपा जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया।

0: कर झामुमो नेता त्रिभुवन मंडल ने कहा कि सरिया जिला बनने की सभी अहर्ताएं पूरी करता है।
1: सरिया अनुमंडल है, वो जिला बनने का सारे अहर्ताएं पूरी करता है। जहाँ नगर निकाय है वहाँ अनुमंडल स्तरीय न्यायालय सरकार बना रही है। ये रांची और दुमका के मेन रोड पर स्थित है। हजारीबाग वन पर क्षेत्र का ऑफिस है, इसलिए निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि सरिया को अनुमंडल को जिला घोषित करे।
0: राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलओ टू की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसआईआर को समावेशी बनाने पर चर्चा हुई। रांची के बूथों पर भी चुनाव पाठशाला और बैठक के दौरान एसआईआर से जुड़े विषयों पर विमर्श हुआ। इस दौरान उपस्थित बीएलओ और अन्य पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने एसआईआर की प्रक्रिया में सभी से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। राजनीतिक दल भी राज्य में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सजग हैं, ताकि कोई पात्र मतदाता इससे वंचित न रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने आज रांची के विभिन्न बूथों का दौरा कर एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से अनुपस्थित, स्थान परिवर्तित, मृत और दोहरे नामों की सूची से संबंधित कार्यों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया। मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री राजू ने मतदाता सूची के शुद्धिकरण के इस बड़े अभियान से वोटरों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। यह युद्धपोत मुख्य रूप से कम गहरे पानी में पनडुब्बियों की टोह लेने, निगरानी करने और दुश्मन के हमलों को नाकाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्धपोत में 80% से अधिक उपकरण और तकनीक स्वदेशी हैं। रांची के सेल अंतर्गत एमटीआई बिल्डिंग में आज से 2 दिवसीय मानव संसाधन कॉन्क्लेव शुरू हुआ। इस सम्मेलन में देश भर की नवरत्न कंपनियों के एचआर हेड और अन्य कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादन में वृद्धि जैसे विषयों पर चर्चा का दौर जारी है। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद व्यवहार न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रामगढ़ एसडीपीओ आलोक रंजन ने बताया कि न्यायालय परिसर की जांच की जा रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
2: आज में यह पाया गया कि किसी अध्यक्ष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से सूचना दिया गया था, वो किसी गुप्त भावना से प्रेरित था। वो हालांकि हम लोगों के द्वारा सतर्कता बढ़ते हुए आज सभी जितने भी एसओपी फॉलो करते हैं, हम लोगों के द्वारा सभी परिसर को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया है। लगातार यहाँ पेट्रोलिंग भी है और एक्स्ट्रा फोर्सेज भी यहाँ पर डिप्यूट है।
0: राज्य के कई जिलों में 26 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में आज कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल भी कई इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। भारी बारिश का यह सिलसिला 26 जुलाई तक रह सकता है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में सर्वाधिक 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ।
1: बिल्कुल बढ़िया।
2: बिल्कुल मॉनसून में
1: बारिश का आनंद ले रही हो, है ना?
2: बिल्कुल।
1: देखिए कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां, तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मॉनसून चलेगा।
2: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मॉनसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
1: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती। तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है, महिलाएं और फिटनेस, ये हमारा पहला विषय है। और दूसरा
2: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर। हाँ। और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए।
1: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
2: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है, हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है या फिर आप अपने अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
1: तो ये आप हमें बता सकते हैं, और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए आज फिटनेस की बहुत सारी बात है, तो ज्वार के व्यंजन, अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह, एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं, तो आप जहां पर रहते हैं आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं।
2: क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं, तो आप बताइए आप किस तरीके से आप इसको ज्वार को बनाते हैं?
1: हाँ, तो रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं हमारी दादी नानी के जमाने से कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें सब्जियां उसके साथ खाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और
2: गीत, संगीत।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: आरती देखो, पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी, लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो चलो फिटनेस के ऊपर हम और कुछ बताने वाले
0: हैं। हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका है, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करी है, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं। आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
3: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही है लगातार?
3: जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
3: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो समय सखा भी सुनते हैं, तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ आकर।
2: जी, हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
3: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है।
2: बिल्कुल,
3: और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही है, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है, और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा,
2: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
3: नहीं, अमूमन नहीं होता।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये, कि तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
1: जी
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहां तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी,
1: जी
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूँ, एनसीसी की कैडेट रही हूँ
1: बैडमिंटन खिलाड़ी।
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है।
1: जी
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की, तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूँ। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं, तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी, वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी, फतेह, इसी
1: जी
0: थीम को
1: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, ना महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ चना चवला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें। तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई, और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार, तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया।
1: ओ
0: तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहां हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहां, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना, फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था और उसकी छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूँ आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है, क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की होती है। गर्दन

0: आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जमाना बदला है, है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है
0: जी।
1: एक जमाना था जब मैंने ये चीजें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ, और जमाना बदला है तो, और अब चीजें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नज़रिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
0: बिल्कुल।
1: मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें
0: जी,
1: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता
0: जी। और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
1: मैं ना खूब मस्तीखोर हूँ, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता है। मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहाँ म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं,
0: थिरकने लगते हैं।
1: तो मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं, और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: सुनते हैं
1: तो बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका। विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी
1: जी
0: वाली बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा की।
1: जी बहुत धन्यवाद ममता जी, आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: तो आरती देखो, हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह

0: से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफी कुछ बातें हमें बताई। और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस,
1: बिल्कुल ये भी फिटनेस में ही आता है।
0: तो ये उन्होंने हमें बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती है, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती है। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा।
1: बिल्कुल। और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है।
0: हाँ, और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें, तो वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
1: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो जाएगी।
0: हाँ, लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती, घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम हैं, और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है। और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
1: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते तो वो पनीर खाएं, ज्यादा से ज्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीजें ले सकते हैं। और ये जो जंक फूड होते हैं, जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें होती हैं, उनको अपना लें तो ज्यादा बेहतर है।
0: हाँ, डिब्बाबंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज बनाकर,
1: क्योंकि हम छोटी सी भी चीज जो जंक फूड वाला लेते हैं ना उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज्यादा अच्छा है।
0: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
1: बिल्कुल। और जीवन के अलग अलग चरण है, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय है या रोजनावृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती है वो बदलती रहती है, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल। ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है। इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना जरूरी
1: है। अगर आप जिम नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं ना उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं। तो आप घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
0: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी है जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग, मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी है वो ये भी लिख रही है कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ, संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ, मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टूगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक

0: शांति और लचीलेपन के लिए योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिजाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल, पहले तो इसे प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
0: बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
1: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियाँ होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते हैं, चटकदार जो रंग होते हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों,
1: जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है त्योहार है।
0: बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है, तो वो भी बड़े एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके मुख्य प्रकार है फानेक, मयेक, नाइबी, क्षेत्रीय धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं।
1: जी, और फिर है मोइरांग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखेई फी, ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखेई क्षेत्र में बुना जाता था।
0: और जी, सामी लामी फी, ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों और पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है।
1: जी, और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है, एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो, या फिर आपके कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहां से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा, उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आइए। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं। हाँ, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब यह होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च के साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची, भाई इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है या एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है। हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी, और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगी पूर्ण जीवन और मितव्यता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्यता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत सुनना है।

गीत एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है। अच्छा। महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीजें

0: मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है किनारों से, इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके, और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके और थोड़ा दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसी बता दिया आपने।
0: बिल्कुल पारंपरिक जो रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद जो वो निकल
1: बढ़ जाता था। खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल अब और भी व्यंजन
1: हाँ जी बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेकें, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका। अच्छा। वो तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैला दें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके। अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल लें, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुने और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए 1 कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन भी उसमें आप ले सकते हैं।
0: हाँ।
1: लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का। तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो 2 कप ज्वार का आटा, 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, 2 टेबल स्पून तेल और 1 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंथ सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा फिर, वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए, लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए, तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए, फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए, फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी, ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं, तो ये तो हम नहीं बता रहे।

0: इसके आगे इन्होंने ज्वार की स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है, तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक ले या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल ले, और यह स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल ले, और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है, जो भी जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल, एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ज्वार का आटा, 3 बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, 3 कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब 1 बाउल में जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए। सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें। तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको। फिर तवे पर गोल गोल डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं, जैसे कि आप डोसा बनाते हैं, और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं, आलू का मसाला, या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल, जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें, और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए, और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमें लिख के भेजी है, लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे। तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
1: बना के देखिए,
0: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल, इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल, स्वस्थ रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रांची मेलोडीज, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरखेट्टा। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड लिमिटेड की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बख्शी और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के कुलपति प्रोफेसर समीरन दत्ता ने इसे लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल ख्यांगते का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिया गया है। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ रांची में आज भाजपा जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। रांची महानगर द्वारा आयोजित जेपीएससी कार्यालय घेराव में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार और जेपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरियों को बेचा जा रहा है और प्रतिभावान युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और बीएलओ तथा बीएलए 2 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसआईआर को समावेशी बनाने पर चर्चा हुई। रांची के बूथों पर भी चुनाव पाठशाला और बैठक के दौरान एसआईआर से जुड़े विषयों पर विमर्श हुआ। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पूछती है तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
3: नमस्कार विनोद भाई और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
2: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
4: नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
2: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
3: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन

0: वो मैं मुकेश जी के गाने संभव मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ,
1: वाह वाह,
0: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे,
1: वाह
0: तो
1: वाह
0: इस
1: वाह
0: तरह से
1: वाह,
0: मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा,
1: ये किस शहर की बात है?
0: अहमदाबाद की, जहां मैं रहता हूं, मेरी
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: पैदाइश वहीं की है।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका
0: जी
1: जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
0: जी
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
2: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के, और जहाँ पे मैं सीखता था बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात
1: हाँ,
2: नहीं, वो गाने का मौका मिला,
1: क्या बात है।
2: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया
1: क्या बात है,
2: इसमें।
1: तो वही गाना सुनाइए फिर।

0: और को चाहोगी तो मुश्किल
1: क्या
0: होगी।
1: बात है, क्या बात है। एक और बात, गोविंद के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे?
2: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
1: ओ हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
2: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग मिली मैंने प्रयागराज संघ समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो
1: बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
2: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ। मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ।
1: अच्छा, ये भी हुआ है?
2: हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर
2: नहीं। जी
1: मुख्तार भाई, आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
3: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है?
3: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा
1: जी।
3: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में।
1: हाँ।
3: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है कि सच में। कोर्ट रूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं। तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
3: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते ना
1: जी,
3: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है।
1: हाँ।
3: आज भी मतलब मेरा एनरोलमेंट है
1: जी।
3: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं। तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी।
1: हाँ, हाँ।
3: तो ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं।
3: हाँ।
1: क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं।
3: जी जी।
1: पर मैं यहाँ चाहता हूँ कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आप को कम गाने का मौका मिला।
3: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद।
1: क्या बात, क्या बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है।
3: जी जी। तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है।
1: वाह वाह वाह।
3: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका।
1: एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे इनाम लेकर पुकारो।
3: हाँ, क्या बात है। वो भी डांसिंग का म्यूजिक है।
1: ये डांसिंग का म्यूजिक।
3: तो दो लाइनें हो।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आंख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं उनको।
0: क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
1: जी।

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाए और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है। और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद, आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का। यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिए जाए और एक सैड नंबर दिए जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
1: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं। और मैं तो इनफेक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
0: क्या
1: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
2: क्या बात है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है, और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज, तो इस गाने को चुना जाए किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज, ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने, तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है,
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्म आए गए उनके गाने,
0: वाह वाह,
1: जैसे फिल्म कभी कभी का,
0: हाँ

0: इतना अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहाँ पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफ़ी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर्स में सबसे ज्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज्यादातर नेदरलैंड से लोग जो है सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहाँ रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
0: क्या बात है
1: ये की देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती है?
2: सैड नंबर की ज्यादा आती है।
0: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
0: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में है, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
0: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा, है ना। तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने ही अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।
2: दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे

0: जब आप लोग गाते हैं तो बिल्कुल यूं लगता है जैसे मुकेश जी हमारे सामने मौजूद हैं और गा रहे हैं। अपने गले का किस तरह से ख्याल रखते हैं आप लोग, बारी बारी से बताइए। पहले मुख्तार।
1: बिल्कुल, आप ये सवाल मुझसे करते तो मैं कहता पहले इनसे पूछिए।
2: अब पर्टिकुलरली यूनुस भाई, थोड़ा सा गले का ख्याल रखने में एक तो बात यही होती है कि थोड़ा सा अपने वॉइस के लिए जो भी मैं तो बाकायदा म्यूजिक सीखा नहीं हूं, लेकिन मुझे जो थोड़ा सा उटपटांग आता है वैसे थोड़ा सा रियाज करना सुबह में, वो थोड़ा सा करते हैं। एक गले के लिए खास सबसे पहला वही जरूरी होता है, और दूसरा ये होता है कि शो से 3-4 घंटा पहले तक कोशिश करते हैं और ख्याल रखते हैं कि कुछ फ्राइड कुछ नहीं खा लें या खट्टा कुछ ऐसा नहीं खा लें, और ठंडे का परहेज तो हमेशा रहता है थोड़ा।
0: गोविंद, आप
1: आइसक्रीम वगैरह तब चलता है जब 3-4 दिन का गैप हो, तब ऐसा लगता है कि भाई अभी गैप है खा लो। हाँ। थोड़ा सा कर सकते, थोड़ा फ्राइड चीज कुछ हुआ। हाँ। क्योंकि समोसा वोसा मुझे बहुत पसंद है।
0: अच्छा।
1: तो मैं देखता हूँ कि 3-4 दिन का गैप है तो मैं खा लेता हूँ, अदरवाइज नहीं खाता। और कोशिश करता हूँ कि नींद प्रॉपर लूं जितना हो सके, 7-8 घंटे की नींद लेता हूँ। और सुबह उठना जैसा मुख्तार भाई ने बोला कि थोड़ा सरगम पे तो लगता ही हूँ, मतलब नोट्स पकड़ के एक नोट सा नींद आ पाए सरगम, वो एक नोट पे रहता हूँ मैं।
0: बिल्कुल, इलाहाबादी व्यक्ति को दुनिया में बाकी जगहों के समोसे पसंद आते हैं।
1: नहीं आते, लेकिन अब वो टेस्ट ऐसा करता हूँ चलो इलाहाबाद में ही खा रहा हूँ।
0: अच्छा। खान पान का बाकायदा परहेज होता है
2: थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ख्याल तो रखना ही रहता है।
0: अच्छा, ये बताइए कि मुकेश की बहुत सारी गजलें हैं और उनमें से कुछ गजलें आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये मुझे पता है। तो किन गजलों का
2: खूबसूरत उन्होंने जो गैर फिल्मी ये गजल वगैरह उन्होंने गाई है
0: जी।
2: लेकिन मेरा जो पर्टिकुलर मुझे जो बहुत पसंद है वो है

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मन्ना डे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑन एयर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: और क्या बात है,

रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं, 4:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की आज की कड़ी।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्म भूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबेल मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
0: ये मोरुंग होता क्या है?
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
2: जी,
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
2: जी,
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
2: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
2: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
3: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
4: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
3: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
5: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
4: जी मालिक, ये बात तो है।
5: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो,

0: हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
1: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
0: अच्छा,
1: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
0: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
1: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूँगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
1: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
0: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, फुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
0: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 शेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 शेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 शेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
0: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
0: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
0: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी

0: 순늘이야? 똥? 메리 뼈리 순늘이야.
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को फुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे, तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक बिल्ली की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
5: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
4: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
5: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
4: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
5: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
6: नमस्ते मैडम।
7: नमस्ते बेटा।
6: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
7: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
6: ओह।
7: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
6: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
7: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
6: नहीं,
7: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
6: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
7: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
6: अच्छा,
7: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
6: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
7: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
6: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
7: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
8: हाँ जी बताइए।
7: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
8: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
4: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कू कू करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
7: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे

0: आ रहा था।
1: अरे शेल्विन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो। तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है। अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापिस चलो।
3: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है। सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
3: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई। मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
3: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
3: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
3: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
3: मुझे यही चाहिए।
1: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
3: नहीं।
1: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
3: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
1: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
3: यूं ही?
1: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
3: क्या मतलब? अगर इसकी टांगें खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
1: अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
3: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है, वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
1: पर बेटा ये तो
3: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
1: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
3: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए। अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
1: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
3: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
4: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
1: अरे बेटा ये तुम्हारा।
3: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच। मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस।
3: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
3: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड लिमिटेड की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। JPSC की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने JPSC कार्यालय का घेराव किया। मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ली गई JPSC की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी आज सरायकेला खरसावां में कोल्हान के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। मौके पर श्री बाउरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कथित रूप से गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर जनहित के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। राज्य में SIR प्रक्रिया को गति देने के लिए आज सभी बूथों पर चुनाव पाठशाला और BLO तथा BLO 2 की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान SIR को समावेशी बनाने पर चर्चा हुई। रांची के बूथों पर भी चुनाव पाठशाला और बैठक के दौरान SIR से जुड़े विषयों पर विमर्श हुआ। और हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में छापेमारी की। इस दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 5:22 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। बस थोड़ी देर में

कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी सुन रहे सभी संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार। श्रोताओं, आज है 22 जुलाई और आज के ही दिन यानी कि 22 जुलाई 1923 को हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग के महान पार्श्व गायक और दर्द के शहंशाह मुकेश साहब का जन्म हुआ था। तो आज के अधिकांश संगीत के कार्यक्रम में इनके गीतों की प्राथमिकता दी जाएगी। आइए आज की इवनिंग मेलोडी में इस सफर को और भी सुरीला बनाते हैं मुकेश साहब के कुछ शानदार गीतों के जरिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम मुकेश साहब के गए कुछ गीतों को हमने शामिल किया है, क्योंकि आज है 22 जुलाई और आज के ही दिन यानी कि 22 जुलाई सन 1923 को भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश साहब का जन्म हुआ था। और मुकेश साहब का भारतीय सिनेमा के पार्श्व गायन के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान है, यह आज किसी से भी छिपी हुई बात नहीं है। तो आज मुकेश साहब का अंदाज निराला था गाने का, हालांकि आरंभ के कुछ गीतों में केएल साहब की भी छाप थी उनमें, और शुरू के गानों में केएल साहब, जिस वक्त मुकेश साहब का पदार्पण हुआ तो केएल सहगल साहब का भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान था और एकमात्र वही एक गायक थे। तो चाहे मुकेश साहब की बात करें, रफ़ी साहब की बात करें या किशोरदा की बात करें, ये सभी जो है सो उनकी गायकी से इतनी ज़्यादा प्रभावित है कि आरंभ के कुछ गानों में केएल सहगल साहब की भी छाप थी और इससे मुकेश साहब भी अछूता नहीं थे। फिलहाल दो फिल्मों के गीत आपने सुना, दीवाना फिल्म का गीत आपने सुना और इस वक्त सुन रहे थे पहचान फिल्म का गीत। मुकेश के साथ सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी इस खूबसूरत से गीत में। आइए अब बाकी के गीतों को सुनते हैं। कार्यक्रम है इवनिंग मेलोडी और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने दोस्त अशोक के साथ।

दोस्तों, आपने इस बीच फिर दो फिल्मों के गीत सुने। पहली फिल्म थी एक फूल चार कांटे, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज थी इस फिल्म में। और इस वक्त जो आपने गीत सुना वो थी परवरिश फिल्म का खूबसूरत सा ट्रैक। मुकेश साहब के सर में एक और गीत पेश कर रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है इवनिंग मेलोडी।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी आकाशवाणी का। यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 5:30 होने को लीजिए प्रस्तुत है कृषकों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेती बारी सुनने वाले सभी ग्रामीण श्रोता के ममता के दने से प्रणाम जोहार और स्वागत हनी कार्यक्रम में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कार्यक्रम के सभी गोटे जुड़ गए होती। तो श्रोता, जैसन कि अभी बरसात के मौसम चल रहा है, तो ऐसन में हमनी के बहुत सावधानी से रहे के चाही। बरसात जरूरी है खेती बारी के लिए, सब जीव जंतु के लिए, लेकिन एक में भी जरूरी है कि हमनी के सावधानी बरतिए। तो ऐसन में देखा कि नदी, तालाब और जल भराव वाला जगह से हमनी के बहुत ही सावधानी बरत के रहे के चाही। सबसे पहले देखा कि डूबे, करंट लगे और संक्रमण रोग से भी बचना चाही, और पानी से जाए से भी, और नदी तालाब के किनारे भी हमनी के सावधानी बरते के चाही, पानी में उतरे से बचे के चाही, तालाब के गहरा पानी में नए तैरे के चाही, चेंगा चुटियन के हमेशा से दूर रहे के बोलते रहे के चाही कि भाई तालाब और बरसात के मौसम में तैरना उड़ना नहीं चाहिए। और देखा कि तेज बहाव के कारण देखा पैर फिसले के भी डर हो है, और ऐसन में कहा हो कि भाई बहुत लोग है कि जल स्तर कभी भी बढ़ सको है, ऐसन में नदी के चट्टान में बैठे के भी नहीं चाहिए, और जल स्तर बढ़ जाए के कारण नदी में डूबे के डर हो जाए, और हमनी इनके खुला गड्ढा से भी बचे के चाहिए। रास्ता में चलते समय हमनी इनके डंटा छड़ी के मदद से आगे रास्ता के टटोले के चाहिए, ताकि खुला नाला या गड्ढा से बच सकिए, और हमने इनके बिजली के खंभा और तार से भी दूर रह के चाहिए। कहे कि देखा कि पानी के संपर्क में बिजली के तार और करंट में बहुत ज़्यादा करंट आ जाए, जो बहुत ही नुकसान हो सको है। और एक और बात कहवे ग्रामीण श्रोता कि वाहन जो गाड़ी है उस सब के भी ज़्यादा बारिश के मौसम में नहीं चलावे के चाहिए। पानी से भरल सड़क हो चाहे पुल हो, ओकरा में गाड़ी के निकाले से बचे के चाहिए, काहे कि पानी के गहराई के अंदाजा नहीं रहे के कारण गाड़ी भी बह सको है। साथे साथे गंदा पानी से भी हमने इनके बचे के चाहिए, काहे कि जल भराव वाला जगह में गंदा पानी के तू खाली पैर अगर चलवा तो ओकरा से तोरा मतलब चर्म के गंभीर बीमारी हो सके हो। और एक और सबसे बड़ा बात है कि हमने इनके अपन बाल बच्चा के भी पर भी बहुत ध्यान देवे के चाहिए, नज़र रखे के चाहिए कि बारिश के पानी से भरल गड्ढा, तालाब या नाला के पास अकेले ना दे जाए देवे के चाहिए। तो देखा कार्यक्रम के शुरुआत हो गए है सभी ग्रामीण श्रोता, और हम आगे भी बहुत सारा बात करवे। तो कार्यक्रम के शुरुआत में कहने हमने सुनिए जरूरी संदेश और एगो प्यारा सा गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी

आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखा अभी हम सुन लिए इतने बढ़िया सा गीत और साथ ही साथ ही जरूरी संदेश, और एकर से पहले हम बातचीत कर लिए कि भाई बातचीत कर लिए कि कैसे हम नींद के बरसात के मौसम में नदी तालाब जल भराव वाला जगह से हम नींद के सावधानी तरह से रहे के चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देवे के चाहिए और कोई भी घटना घटे से पहले हम नींद के सावधान हो जावे के चाहिए। और ऐसे ही साथे साथे देखा कि अभी जैसन कि बरसात के मौसम चल रहा है तो खेती बाड़ी में भी फसल में कीट और रोग लगे के बहुत ज़्यादा संभावना हो जाए है। और एक और अगर कीट और रोग के हमने समय पर पहचान कर लेवे तो ओकर से का होते कि हमने नियंत्रण भी समय पर कर लेवे। तो एकर पहचान का है कि देखा कीट के पहचान हो कि पत्ता में बदलाव देखे दिखतो तोरा, और साथे साथे ये भी देखे देखबा कि पत्ता के रंग बदल जाए है, धब्बा में काला या भूरा रंग के हो जाए है, धारी धारी हो जाए है, और साथ में देखा कि पत्ती अपने आप मुड़े लगतो, तो एकर से ई हो जाए, एकर से ई हो जाए कि भाई अगर पत्ती के नीचे तना और फूल ई सब में तोरा देखवा कि छोटा छोटा कीड़ा ओकर अंडा दिखाई देवे लगे है। तो पौधा में अगर हमने इनके बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी है सिंचाई लगी ओकर बावजूद अगर पौधा मुरझा रहलो तो वो भी एगो लक्षण है कि भाई कीट लगे के। और फफूंद पत्ती तना में तू देखबा कि पाउडर नियर सफेद और मलमल और रोवादार टाइप के दिखे लगे है, तो ई सब देख के पता चल जाते कि कीट लगे। और एकर से बचाव लगी हमने देखा कि सांस्कृतिक नियंत्रण जगह में तू देखा कि फसल चक्र के अपना सको है, जैसे धान के साथ दलहन के भी खेती करे से एकर में नियंत्रण हो जाते, और धान में गहरा जुताई करके कर देवे के चाहिए ताकि जैविक नियंत्रण हो सके, और मित्र कीट के बढ़ावा देवे के चाहिए और नीम के तेल के छिड़काव भी करते रहे के चाहिए और रासायनिक के प्रयोग कम से कम करे के चाहिए। तो देखा हम आगे भी बात करबे किसान भाई बहन, तो हम आज बहुत बढ़िया एक भेंट वार्ता लेके आए हैं कि एक सफल किसान है अजीत बिन्हा जे ला की खेती बड़े पैमाने पर कर रहल थी है। तो बिना कुबेर कहले हमने सुने ही ये जानकारी। श्रोताओं, हम समय समय पे आपकी मुलाकात बहुत ही अनुभवी किसान से करवाते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम आए हुए हैं जमुआरी ग्राम, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अनुभवी किसान हैं जो यहाँ बड़े पैमाने में लाह की खेती कर रहे हैं। जो आप अक्सर देखते हैं कि महिलाएं जो लाह की चूड़ी वगैरह पहनती है, इसका और भी बहुत सारा प्रयोग होता है, इसकी खेती ये कर रहे हैं। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका नाम क्या हुआ?
1: मैं अजीत बिन्हा हूँ।
0: कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं?
1: अभी मैं ये 2-2.5 साल से
0: जी
1: इस पर लगे हुए हैं। लाख के ऊपर में लाख का खेती कर रहे हैं।
0: और ये खेती करने से पहले आपकी पढ़ाई लिखाई बताइए कहाँ तक आप किए हुए हैं?
1: मैं इंटरमीडिएट पास किया हूँ
0: जी,
1: और आगे का पढ़ाई तो अपना खेती बाड़ी पे ध्यान देते हुए हाँ, मैंने नहीं किया।
0: तो ये बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई करने के बाद आपका रुचि और रुझान खेती बाड़ी के तरफ
1: जी,
0: हुआ
1: जी।
0: सबसे पहले हमें बताइए कि लाह की खेती जो कर रहे हैं इसकी तरफ रुझान आपको किस तरह से हुआ, कैसे आपको लगा कि हमको इसकी खेती करनी चाहिए?
1: देखिए, हर खेती में एक बहुत रिक्स होती है, लेकिन लाह की खेती में देखा सिमिया लतम जो लाह की खेती हो रही है वो बहुत सरल तरीके से हो जाती है, उसमें रिक्स का कोई बात ही नहीं होती है। जैसे बड़े पेड़ में कुसुम का पेड़ हुआ,
0: हाँ,
1: उसमें चढ़ना और उतरना किसान लोग के लिए बहुत मतलब डर टाइप से होता था
0: जी।
1: तो उस डर के चक्कर में मैं देखा कि सिमिया लता में खेती अच्छा हो रही है लाख की।
0: तो ये जो आप खेती कर रहे हैं लाख की, तो इसका जो शुरुआत में जो आप ये पौधा होता है कि बीज होता है इसका, वो क्या लगाते हैं आप? वो बीज रहता है या पौधा ही इसका लगाते हैं?
1: मैं अगला कृषक को देख करके वो पौधा का ही मांग किया। तो अगला कृषक बोले कि मेरे पास पौधा उपलब्ध है, तो मैं वहाँ से पौधा 1000 पौधा खरीद करके लाया।
0: तो ये 1000 पौधा कितने जमीन में लगाया?
1: ये आधा एकड़ में लगा हुआ है
0: जी।
1: और इसका कीमत भी मैं बताता हूँ कि 8 रुपया पीस करके दिया था
0: जी जी
1: पौधे का।
0: ओ, तो मतलब 8 रुपया पीस कर आप 1000 पौधा लगाए हैं
1: जी।
0: तो ये पौधा लगाए हैं तो ये पौधा आपको पूरा उपचारित वगैरह ही मिला होगा, ताकि उसमें से कोई पौधा अगर मरने की संभावना नहीं होती है ना?
1: जी, पूरा उपचारित पौधा मिला हुआ था और अभी 95% मेरा पौधा ठीक है, स्वस्थ है एकदम।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो पौधा है तो ये जमीन को तो इसके अलग तरह से तैयारी करनी होती है कि और जो आप साग सब्जी पेड़ पौधा लगाते हैं वैसे तैयारी करनी पड़ती है?
1: ये साग सब्जी लगाते हैं वैसे ही तैयार किया जाता है, लेकिन इसका गड्ढा कोड़ना पड़ता है 1 फीट करके।
0: ओ, 1 फीट करके।
1: हाँ,
0: और कितनी दूरी में लगाते हैं?
1: 1-1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं इसको।
0: 1-1 मीटर की दूरी में, वो मतलब बढ़ने का जगह उसको मिलना चाहिए ना। और ये कितने दिनों में ये पौधा मतलब उसमें ला आना शुरू हो जाता है?
1: लाख का पौधा लगाने के बाद 6 महीने तक उसको पौधा को तैयार किया जाता है
0: जी।
1: उसको 6 महीने के बाद में उसमें लाख का कीड़ा छोड़ा जाता है
0: जी। तो ये 6 महीने में तो थोड़ा लंबा ही समय है ना
1: जी।
0: और ये जो कीड़ा है वो आप लोग उसमें डालते हैं
1: जी,
0: तो वो कीड़ा का इंतजाम कहाँ से करते हैं?
1: ये बाजार में ही मिल जाता है, जैसे कहीं पर सपोर्ट है के संस्था है वो काम कर रही है चरही में। चरही से हम लोग मंगवा लेते हैं, वहाँ सपोर्ट संस्था काम कर रही है, वहाँ से हम लोग को लाख का कीड़ा उपलब्ध हो जाती है
0: जी। और ये जो लाख की जो खेती आप कर रहे हैं, ये पौधा किस समय लगाए हैं आप?
1: जून जुलाई के महीना में ही लगाया जाता
0: जी, मतलब ये जून में लग चुका है
1: अभी, अच्छा टाइम है।
0: हाँ, यही इसी समय लगता
1: इसी
0: है।
1: इसी समय में।
0: ओ, बिल्कुल अच्छी बात है। और ये मतलब कब तक 6 महीना होता होगा, कब तक मतलब ये हो जाता है?
1: मतलब जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं, 15 फरवरी तक, उसके बाद।
0: और ये लाख का कीड़ा कितने दिनों के बाद, 6 महीना के बाद?
1: मतलब 1 लाख का कीड़ा आप छोड़ेंगे तो वो 5 से 6 महीना में तैयार हो जाती है फिर।
0: ओ, अब वो लाह का कीड़ा उस पेड़ में छोड़ने के बाद वो पेड़ में ला तैयार करती है
1: जी।
0: वो किस तरह से तैयार करती है?
1: वो ला एक कीड़ा होती है, वो अपना मल से ही लाख का गेठी बांधता है
0: जी,
1: और गेठी तैयार हो जाता है, डंठल में पूरा भर जाती है।
0: हाँ,
1: उसको फिर कटिंग किया जाता है
0: वो लाह को।
1: हाँ,
0: डंठल के साथ।
1: हाँ, डंठल के

0: साथ में।
1: अच्छा।
0: और सिमिया लता का पौधा ऐसा है कि नीचे कटिंग कर दीजिएगा तो फिर वहाँ से वो तीन चार डाल शाखा
1: निकलते चला हाँ। जाता है।
0: 10 साल का ये
1: मतलब एक बार आप लगाइएगा तो वो 10 साल तक उसमें
0: लगा सकते हैं।
1: और वो कीड़ा भी हमेशा डालना पड़ता है कि उसी से?
0: ना, हमेशा डालना पड़ता है।
1: मतलब एक बार कटिंग पौधा 10 साल तक चलेगा?
0: हाँ, 10 साल तक चलेगा।
1: और कीड़ा आपको समय समय पे उसमें डालना पड़ेगा
0: जी।
1: ये तो बहुत
0: उसका उचित समय है। 2 बार डाला जाता है कीड़ा
1: जी,
0: ये 15 फरवरी मार्च फर्स्ट तक, उसके बाद में ये 15 जुलाई और 1 अगस्त के बीच में उस कीड़ा को छोड़ा जाता है
1: जी। तो एक पेड़ में वो गांठ जैसा बनते चला जाता है
0: जी।
1: मतलब कितने गांठ बनते हैं एक पौधे में?
0: मतलब वो एक पौधा में जैसे 1 मीटर का पौधा हो गया
1: हाँ।
0: तो आधे किलो तक का वो ला तैयार हो जाती हाँ, है
1: वो गांठ बन जाता
0: हाँ,
1: है
0: हाँ, आधे किलो तक।
1: मतलब एक कीड़ा आधा किलो का गांठ बना देता है। और एक पौधे में कितने कीड़े मतलब छोड़ते हैं एक?
0: नहीं, उसका एक मतलब चयन किया गया है।
1: अच्छा।
0: कि कम से कम 6 इंच 4 इंच 5 इंच जैसे करके हाँ। वो डंठल को काट करके उसका ला गठे रहता है ना
1: हाँ हाँ।
0: उसी को उसको रस्सी के सहारे बांध दिया जाता
1: वो
0: है
1: कीड़ा को
0: जी
1: जी। अच्छा।
0: वो गठी को ही बांधा जाता है उसी हाँ। से कीड़ा निकलती है।
1: ओ, उस गांठ में वो कीड़ा निकलना शुरू हाँ। हो जाता है
0: वहीं से पूरा फिर पौधा में अपना वो कीड़ा फैल जाता है और अपना मल से वो फिर नया गांठ को
1: तैयार कर लेता है। तो एक पौधा में आधा केजी लाह तैयार हो जाता
0: जी।
1: है। और ये लाह कब तक वो तैयार होने का पता चलता है कि वो लाह तैयार हो गया?
0: 4 से 5 महीना में वो पूरा गांठ तैयार हो जाती है
1: हाँ।
0: तो तैयार हो जाने के बाद में लाह देखिए कि वो पूरा लाल टाइप से हो जाएगा,
1: लाल जैसा
0: मोटा मोटा एकदम। तो उसको फिर कटिंग कर दिया जाता है। वो लाह को फिर पूरा दाल बना करके उसको वजन करके फिर बाजार में बेच दिया जाता है।
1: गांठ को काट के हटा देते हैं फिर आप उसी में फिर दोबारा कीड़ा डाल के फिर उसी में फिर से ये कर देते
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ये कि ला की खेती इस तरह से आप कर रहे हैं। तो इतने जो 1000 पौधे में कितना लाह तैयार हो जाता होगा?
0: 1000 पौधे में लगभग आपका 4 से 5 क्विंटल तैयार हो जाएगा।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत बड़े पैमाने में हो जाता हाँ। है ना। तो ये और ये जो लाह तैयार होता है तो इसका क्या क्या उपयोग होता है? लाह का
0: बहुत सारा उपयोग है
1: हाँ।
0: आप आज के जो महिलाएं लोग चूड़ी पहनती हाँ। है उसका उसी लाह से निर्माण होता है। आपका सील मुहर लगती है
1: हाँ।
0: उसमें भी लगता है
1: हाँ, मुहर में रहता है
0: हाँ। और जितना भी हम लोग का ये फाइबर का सामान है
1: हाँ हाँ।
0: उसमें लाख का मिश्रण रहता है। और अच्छा बात वो एरोप्लेन जो हवा में उड़ रही है
1: हाँ हाँ।
0: वो लाख और अबरक का मिश्रण से ही उसका बॉडी को तैयार किया जाता है, इसलिए वो बहुत उस समय महंगी बिक्री होती है,
1: बहुत मतलब महंगा बिक्री हाँ। होता है। महिलाएं इनका श्रृंगार का चीज इससे हो रहा है कि इसको हर पूजे में महिला लोग पहनती है और इसके साथ साथ बता रहे कि इतने बड़े बड़े चीज में भी प्रयोग होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कितने मतलब दाम में ये बिक जाता होगा, जैसे पर केजी के हिसाब से चाहे क्विंटल में?
0: अभी तो बाजार में 900 से 1000 रुपये किलो करके बिक्री हो रही है
1: जी।
0: आप क्विंटल में जोड़ लीजिए तो बहुत मुनाफा होती है
1: जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अजीत जी, हमें ये बताइए कि जो ला जो हम लोग पहनते हैं, हम देख रहे हैं कि चूड़ी ला की जो चूड़ी है वो हर रंग में आती है, तो ये रंग मिलाया जाता है कि ला से ही वो रंग आता है?
0: ला से तो लाल रंग ही निकलती है
1: हाँ,
0: लेकिन
1: हाँ।
0: और कुछ कलर बनाने के लिए वो कलर को मिश्रित करके ही नाना किस्म के कलर को बनाया जाता है।
1: और इसके अलावा और लाह का जैसे एक मुहर में काम आ गया और चूड़ी में काम आ गया, फिर एरोप्लेन के का बॉडी में भी काम आ गया, और इसके अलावा भी और किसी चीज में काम आती है?
0: हाँ हाँ, जितना आपका फर्नीचर में कलर जो लग रही है
1: हाँ हाँ,
0: वो लाह का ही रंग है।
1: अच्छा,
0: उसी का रंग को निकाल करके
1: रंग कैसे पिघला के ये हाँ हाँ, होता है
0: उसका चापड़ जो बनता है, उस चापड़ को 12 घंटा के लिए आप तारपीन तेल में छोड़ दीजिए
1: हाँ हाँ।
0: वो पूरा एकदम कलर भूल जाता है, उसके बाद लकड़ी में लगा दीजिए।
1: अच्छा, वही वो लकड़ी में चमक आ जाती
0: हाँ,
1: है ना?
0: चमक आ जाता है जी।
1: अच्छा अच्छा जी, जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लाह से इतना सारा चीजों का प्रयोग हो रहा है पौधा को बचाने के लिए। और जैसे कीड़ा तो आप डाल दिए लाह की तैयारी के लिए, तो ये पौधे में और भी कोई कीट लगते हैं जिससे नुकसान हो सकता है ये लाह का पौधा?
0: नहीं, लाह का

0: जब बीजा लगाते हैं लागा कीड़ा, उसको समय के अनुसार ही मतलब कि पुराना ला को फिर उतार दिया जाता है, नहीं तो उसमें से एक शत्रु कीट निकलती है।
1: अच्छा, वो नुकसान
0: हाँ,
1: कर देती
0: है। वो शत्रु कीट फिर वो जो अपना मित्र कीट रहता है उसको वो खा जाती है, तो नुकसान करता है
1: जी। इसके लिए उसको समय पे हटा देना चाहिए,
0: समय पर हटा देना चाहिए।
1: इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है
0: एकदम गर्मी में, उसको फुल सिंचाई दिया जाता है
1: गर्मी के समय। जैसे अभी इतना भीष्म गर्मी था तो उसमें तो आपको पूरा पटाना पड़ा होगा,
0: पूरा सिंचाई करना पड़ा हमको।
1: तो पटाने के में तो आपको वो और भी निकालनी ये सब भी करना पड़ता होगा, घास वगैरह।
0: खेती बाड़ी है तो उसमें निकाई गुड़ाई भी जरूरत है, कोड़ाई बहुत जरूरी है,
1: और वो कोड़ समय समय पे कोड़ देते हो ताकि बढ़वार होगा। तो ये ला का पौधा कितना बड़ा होता है?
0: ये 2 मीटर तक बढ़ती है।
1: 2 मीटर तक? अच्छा, मतलब वो पेड़ जैसा नहीं होता
0: है? तो 2 मीटर तक बढ़ती है, उसके ऊपर फिर ला उसमें तैयार किए आप तो उसको तो कटिंग कर देना है।
1: अच्छा,
0: फिर नया से नीचे से फिर वो कंसेप्ट फेंकती है।
1: तो ये ला उस मतलब पेड़ के ऊपर में होता है कि बीचों बीच से निकलता?
0: पूरा डाली में,
1: पूरे डाली में,
0: पूरा डाली में मोटा सा परत ला का जम जाता है।
1: जी जी,
0: उसका मल से पूरा जम जाता है, उसी को काट करके फिर डाल करके बाजार में बेचा जाता है।
1: बहुत अच्छी बात है अजीत जी, आप इतनी अच्छी ला की खेती कर रहे हैं, और उम्मीद करते कि सभी किसान जो ग्रामीण होता है वो भी ये जानकारी सुनकर उन्हें भी लगे कि हम खेती बाड़ी में साग सब्जी फल बाग के साथ साथ हम ला की खेती भी करें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी सुनकर सभी किसान लाभ उठाएंगे। और आप कुछ संदेश देना चाहते हैं किसान
0: जी?
1: हाँ, को
0: जी हाँ, देखिए हर तरह का खेती करना जरूरी है, ये नगदी फसल है, एक साल के अंतराल में आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी और इसमें कोई रिस्क नहीं है
1: जी, जी।
0: इसलिए मैं किसानों को कहना चाहूंगा कि आप जरूर से सिमिया लता परला का खेती करें और अपना आर्थिक स्थिति को सुधारें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कार्यक्रम में इतना कीमती समय दिया, उम्मीद करते हैं कि सभी किसान इसका लाभ उठाएंगे। तो आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
1: तो देखा, अभी हमने सुन लिए भेंट वार्ता एक सफल किसान अजीत बिन्हा से, जे ला की खेती करो थी। और देखा कि जैसन कि अभी बरसात के मौसम में हम बात कर लिए कि भाई कैसे हमने इनके सावधानी बरते के चाहिए, साथ में हमने अपन फसल के भी की तरह से कीट और रोग से ई मौसम में बचावे के चाहिए। और एक साथे साथे देखा कि बरसात के मौसम में आदमी मनुष्य के तो दिक्कत हो है, साथे साथे पशु के भी बरसात के मौसम में विशेष ध्यान देवे के चाहिए। कहे कि देखा कि पशु हमनिन पर ही अधीन रहो है, और उनके उनकर हमनिन पालन पोषण करिए, तो उन लोग के भी बरसात के मौसम में विशेष ध्यान हमनिन के देवे के चाहिए। और बरसात के मौसम में देखा कि हम जहाँ पे गौशाला है, नमी और कीचड़ के कारण पशु में बहुत तरह के बीमारी जैसे थनैला, खुरपका, मुंहपका, गलघोटू जैसन जानलेवा बीमारी होवे के डर रहो है। तो ऐसन में हमने इनके करे के चाहिए कि भाई गौशाला के हमेशा साफ सफाई के ध्यान देवे के चाहिए, और बढ़िया खान पान साफ पानी देवे के चाहिए, और गाय जहाँ बैठो है वहाँ हमेशा सूखा रखे के चाहिए, चाहे वो पुआल दे दा तो लड़की लकड़ी के बुरादा बिछादा ताकि वो नमी से बच सके। और गौशाला में हमेशा तू देखा निकासी के उचित व्यवस्था करे के चाहिए, कहे ताकि गोबर मूत्र ये सब तुरंत से साफ होके मतलब ढलाव जैसा जमीन रहता है तो ओकर से वो साफ होके निकल जाते। और साथे साथे खान पान में भी तू विशेष ध्यान देना चाहिए, कहे कि अगर खान पान बेस नहीं रहतो तो फिर वो गोरु डांगर स्वस्थ न रहतो। एक लगी ताजा चारा, साफ पानी, यहाँ तक कि मिनरल पानी देवे के चाहिए। तो देखा बातचीत करते करते ग्रामीण श्रोता कार्यक्रम से हमरा जाए के बेरा भी हो गए। तो कार्यक्रम खेती बाड़ी से ममता के द अनुमति, नमस्कार जोहार।

0: ईश्वर तो सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबारी आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से होगा बस थोड़ी देर में।
1: आकाशवाणी का रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राज्य में झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JFDC की स्थापना के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। रांची में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में इसे लेकर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता SRFTE के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि इंस्टीट्यूट की स्थापना से राज्य में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय प्रतिभाओं को तराशने में भी मदद मिलेगी। JPSC की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने JPSC कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी की और ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ली गई JPSC की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में हुए गोलीकांड मामले में 3 आरोपियों ने पलामू सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस मामले का मुख्य आरोपी भी कोर्ट में सरेंडर कर चुका था जबकि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस कांड में शामिल 17 नामजद आरोपियों में से 6 के जेल चले जाने के बाद अन्य 11 की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने आज सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं और साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शिशु वार्ड में मरीजों की संख्या अधिक पाई गई जिस पर उपायुक्त ने व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में आज DMFT की प्रबंधकीय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिले के समग्र विकास, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा लंबित योजनाओं के शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है, फिर 102.1 मेगाहर्ज पर। शुरू 6:02 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा मित्रों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

कार्यक्रम युवावाणी सुन रहे सभी युवा मित्रों को अशोक का प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत श्रोताओं आपका आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कुछ समय पूर्व जहां बारिश ना होने की वजह से हम सब परेशान दिख रहे थे, और अब बारिश होने के बाद जहां एक और किसानों में खुशी का माहौल है, वहां दूसरी ओर आम जनजीवन थोड़ा सा परेशान है। चूंकि अचानक आई बारिश ने सड़कों पर यातायात को प्रभावित किया, अत्यधिक जल जमाव हो गया। मुख्य रास्तों की बात करें या फिर गली चौराहों की बात करें जी, इसे बहुत ही नुकसान भी हुआ। खासतौर से

से कुछ घरों में भी, खासतौर से नाले के सटे हुए जिनके मकान थे उनके घरों में भी पानी प्रवेश कर गया। तो ये अचानक जो परेशानी होती है उससे निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना होगा और खाली दिलासा देने से कुछ काम सार्थक रूप से नहीं होगी। इसके लिए चाहिए कि नाली का जो सिस्टम है उसे दुरुस्त करना होगा और नालियों की साफ सफाई समय से करनी होगी और साथ खास तौर से प्लास्टिक का जो उपयोग बेतहाशा जो होता चला आ रहा है, सभी लोग कभी कभी कहते हैं, कभी कभी सरकार की तरफ से भी प्रतिबंध लागू होता है लेकिन वो पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं रहता, कुछ समय के लिए चलता है, फाइन काट दिए जाते हैं लेकिन फिर पुनः वही बात हो जाती है कि लोग धड़ल्ले से इसका प्रयोग करने लगते हैं। तो प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक और जितने तरह के जो संसाधन हैं, जो भी कचड़े हैं, वो सब नालियों में फेंकते हैं और यही वजह है कि वो सब जाम हो जाते हैं और ड्रेनेज कहीं रहता नहीं है और पानी जो है सो रुक जाते हैं और जिस वजह से नाली साफ सुथरा नहीं रहता है और उस वजह से नाली का पानी जो है वो सड़कों पर बाहर निकल आता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जनजीवन से संबंधित जिसे हमें सुधार करना होगा और सबसे पहले सुधार प्रशासनिक स्तर पर करने से पहले, गुहार लगाने से पहले हमें और आपको बदलना होगा, तभी इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। श्रोताओं, अब आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि सही करियर का चुनाव के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि लोग जो है सफल हों प्रतियोगिता परीक्षाओं में, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सही करियर का चुनाव के लिए अपने जीवन और भविष्य की सफलता की नींव है और इसके लिए अपनी रुचि, कौशल और व्यक्तित्व का गहराई से विश्लेषण करना होगा। हमेशा दूसरों के दबाव में आने के बजाय स्वयं का आकलन करना होगा। स्वयं का आकलन करें और ऐसे क्षेत्र को चुनें जिनमें आपके स्वाभाविक प्रतिभा हो, आपकी रुचि हो। सही करियर को चुनने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि स्वयं सेल्फ असेसमेंट करें, यानी कि स्वयं का आप मूल्यांकन करें, जिसके अनुसार रुचि और कौशल को पहचाने, सोचे कि आप किन कामों में को बिना थके खुशी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद व्यक्तित्व, क्या आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम वर्क में। तो इंट्रोवर्क और एक्स्ट्रोवर्क स्वभाव के अनुसार अलग अलग जॉब्स बेहतर होती है। करियर का विकल्प भी आप चुने। भारत में 250 से अधिक करियर विकल्प और 5000 से ज्यादा जॉब के प्रकार जो है सो उपलब्ध हैं, तो आप उनमें जो है सो विविधता है, आप उनमें छांट लें कि कौन सा आपके लिए उपयुक्त है। पारंपरिक विकल्पों जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस और क्रिएटिव फील्ड्स जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी विचार करें। इन सब के बाद अगर आप अभी भी भ्रमित हैं तो अपने क्षमताओं को परखने के लिए ऑनलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं, AI का मदद ले सकते हैं। आज AI आपका हर प्रकार से मदद करने को तैयार है, बस आप एक क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए और उसके बाद वो सब कुछ आपको जानकारी दे देगा। तो श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारी कि सही करियर के चुनाव में हम किन किन बातों का जो है सो स्थान रखें। अब एक खूबसूरत संगीत आपके लिए पेश कर रहे हैं, फिर कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगा।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।

0: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ,
1: समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: युवा मित्रों सुन रहे हैं कार्यक्रम युवावाणी अपने दोस्त अशोक के साथ। श्रोताओं चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक अलग प्रतिभा के बारे में बात करते हैं। श्रोताओं आप सब को जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताबों में ही अपनी करियर को तलाशें, पढ़ने लिखने में ही अपने करियर को तलाशें। पढ़ाई लिखाई तो आवश्यक है ही, पढ़ना तो आपको है ही, लेकिन इन सब के अलावा अगर आपकी रुचि किसी अन्य चीज़ों में है, जैसे खेल में आपकी रुचि है, बहुत अच्छा आप खेलते हैं, बहुत अच्छा आप गाते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, अगर स्टोरी राइटिंग में आपकी रुचि है, अगर बेहतर कविताएं आप लिख सकते हैं, तो उन सभी में एक बेहतर करियर आपका इंतजार कर रहा है। तो अगर आप कविताएं भी लिखते हैं तो वो भी आपका एक करियर ही है, और अगर आपकी दिलचस्पी उसमें है और अगर आपके दोस्त संबंधी माता पिता आपको सलाह दे रहे हैं कि आप इंजीनियर में ट्राई करो, डॉक्टर बन जाओ, हमारी ये शुभकामना है, हमने ये सपना देखा था, तो भाई उन्हें थोड़ा बेहतर ढंग से समझाइए कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, उसमें आप आगे जा सकते हैं। आज कविताओं में एक से एक पोएट जो है सो आप अच्छे गीतकार बन सकते हैं, अगर अच्छी आपकी पकड़ है लिखने में तो कविताओं में। तो ऐसे ही कवित्री हैं स्मृति कुमारी, इनकी कविताओं को आज हम पेश कर रहे हैं युवानी कार्यक्रम में, और इनकी कविताओं को सुनकर आप परखिए अपने आप को कि क्या आप ऐसी कविताएं लिख सकते हैं, तो इसमें भी ढेर सारा करियर आपका इंतजार कर रहा है। आइए सुनते हैं।
1: नमस्ते, मेरा नाम स्मृति है। आज आप सबके समक्ष मैं दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूं। पहली कविता का शीर्षक है जीवन का सत्य। एक दिन मृत्यु इंसान से पूछती है, लोग मुझसे भयभीत क्यों होते हैं? इंसान कहता है, तुम जब आती हो शोक का संदेश संग लाती हो, मेरा तन मन सब बेरंग कर चली जाती हो। अपना मन शांत और तन को मैं मूर्छित पाता हूँ, मोह माया सब छोड़कर तुम्हारे संग चला आता हूँ। धन को तुम संग लाने नहीं देती, बस कर्म तुम साथ ले जाती हो। नाम शोहरत और इज्जत का फायदा क्या, नाम शोहरत और इज्जत का फायदा क्या जब तुम सब मिट्टी में मिलाती हो। तुम क्षण भर में सब खत्म कर जाती हो, सारे रिश्ते तोड़कर संग ले जाती हो। मेरे अपनों को तुम कितना रुलाती हो, अब बताओ तुम इतना क्यों डराती हो? मृत्यु उपहास उड़ाते हुए बोलती है, तू कितना बेवकूफ है रे इंसान, तू अपना किसको कहता है? सब तो भ्रम है जिसके साथ तू दिन भर रहता है, जिनके आंसुओं को देखकर तू अपना समझता है, जिनके आंसुओं को देखकर तू अपना समझता है, वही तो बाद में बंटवारे के लिए उलझता है। जिस पैसे को कमाते कमाते तू मर जाता है, वो पैसा शमशान के बाहर ही रह जाता है। जीवन के पहले सच मृत्यु को तू धिक्कारता है, जीवन के पहले सच मृत्यु को तू धिक्कारता है, अपितु हर भ्रम और माया को शान से स्वीकारता है। तेरे शोहरत का डंका शमशान में नहीं बचता है, तेरे शोहरत का डंका शमशान में नहीं बचता है, यहाँ तो बस तू अपने कर्मों से सचता है। दो दिन तक जो लोग तेरे लिए रोते हैं, दो महीने बाद तुझे भूलकर तेरे ही पैसे पे सोते हैं। जो नाम पाने के लिए तू दिन रात घिघटता है,

0: मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तो यहीं रह जाती है, आखिर शव तो तेरी भी चार बांस पर ही जाती है। जिस मिट्टी पे तू सोता है उसी मिट्टी पे एक फकीर सोता है, जो कफन तू पहनता है वही एक फकीर भी पहनता है। तो फिर तू ये मैं का अहम कहाँ से लाता है, जब सब कुछ भगवान करता है। कर्म के बजाय तू जिंदगी भर धन के पीछे भागता है, कर्म के बजाय तू जिंदगी भर धन के पीछे भागता है। मंदिर और अनाथ आश्रम की जगह होटलों में झांकता है। कर्म की बात पर तू ये कहता है कि अरे मरने के बाद वो सोचा जाएगा, परंतु मृत्यु के बाद तो बस अफसोस रह जाएगा। याद रहे, शमशान में नाम नहीं कर्म काम आता है। वहां गिनती बैंक बैलेंस के डिजिट्स की नहीं होती, बल्कि इसकी होती है कि कितने भूखों को आपने दी थी रोटी। वहां अमीर भी एक है और फकीर भी एक है, वहां अमीर भी एक है और फकीर भी एक है। गिनती बस उनकी अलग है जिनके कर्म नेक है। स्मरण रहे, जहां सबकी शान समान है वही शमशान है, वही शमशान है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। घटित हुई थी त्रेता युग में, पर कलयुग में भी इसका गान है। आओ सुनाऊं एक कहानी जिसका शीर्षक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। दशरथ के वो नंदन है, कौशल्या की आंखों का तारा। राजपाट होने पर भी सरलता में जीवन बिताया सारा। विश्वामित्र के शिष्य हुए और जनक जी के जमाई। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मिथिला में अपनी पहचान बनाई। पिता के वचन का मान रखा, छोड़ दिया राजपाट। दशरथ ने प्राण छोड़ दिए, जोहते जोहते उनकी बाट। लक्ष्मण के हट पे उन्हें भी साथ ले लिया, लक्ष्मण के हट पे उन्हें भी साथ ले लिया। 14 वर्ष के वनवास में उर्मिला ने अयोध्या में रहकर लक्ष्मण का इंतजार किया। वन के जानवरों ने भी क्या सौभाग्य पाया, वन के जानवरों ने भी क्या सौभाग्य पाया। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने वहां अपना डेरा जमाया। शबरी का भी जूठा खाया, चरण धुलाकर केवट को निष्पाप बनाया। रावण ने अपनी परिवार की मुक्ति के लिए जान कर ये खेल रचाया, रावण ने अपनी परिवार की मुक्ति के लिए जान कर ये खेल रचाया। श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर अपने काल को स्वयं सजाया। मर्यादा में रहते हुए रावण को परास्त किया, मर्यादा में रहते हुए रावण को परास्त किया। सारी लंका जल गई पर श्री राम ने कभी न अभिमान किया। जो कभी हार न सकता था उसे श्री राम ने हराया, जो कभी हार न सकता था उसे श्री राम ने हराया। जिसका अभिमान सर चढ़कर बोलता था उसको धूल चटाया। अंजनी सूत को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया, अंजनी सूत को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया। उन्हें आम से खास श्री राम दूत महाबली हनुमान बनाया। हर राम नवमी तुमने सियावर रामचंद्र की जय खूब चिल्लाया, हर राम नवमी तुमने सियावर रामचंद्र की जय खूब चिल्लाया। बताओ जरा कितनी बार मर्यादा को अपना गुण बनाया। मैं ये नहीं कहती कि श्री राम बन जाओ, मैं ये नहीं कहती कि श्री राम बन जाओ, पर उनके गुणों को अपने अंदर जरूर लाओ। हर युग में श्री राम एक ही है और एक ही होगा, हर युग में श्री राम एक ही है और एक ही होगा। क्योंकि हर औरत को मां की दृष्टि से किसी ने नहीं देखा, अपनी पत्नी पर किए गए अत्याचार को नहीं रोका, कभी मर्यादा में रहना जरूरी नहीं समझा। इसीलिए हर युग में श्री राम एक ही है और बस एक ही होगा। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, जैसे कि हमने कहा, ये कविताएं स्मृति कुमारी द्वारा लिखित थी और काफी बेहतरीन कविताएं थी जिंदगी के को नजदीक से समझने की जरूरत थी। इस कविता में संदेश था। तो हमने आपसे पहले भी कहा कि आपके अंदर कुछ भी रुचि हो, आप बेहतर गीत लिख सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि कुछ कविता आप लिखते हैं और उसका धुन भी बना लेते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा करियर है।

0: भले ही हजारीबाग में नहीं है, लेकिन हजारीबाग से आप आगे जाएंगे तो बेशुमार करियर आपका इंतजार कर रहा है। इन सब के अलावा अगर आपका सोशल मीडिया में आपका करियर है, आप बेहतर कुछ गा सकते हैं, कुछ आपकी अपनी रचनाएं हैं, तो उन सबको आप सोशल मीडिया में अपलोड कर सकते हैं और बेहतर यूट्यूबर भी बन सकते हैं। तो आपका दरवाजा अभी के टाइम पे 21वीं सदी में बहुत चारों ओर जो है चहुमुखी विकास के द्वार खुले हुए हैं। सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आप अपना कर स्वरोजगार के माध्यम से आप सब बेहतर कमाई कर सकते हैं। चलिए खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं, उसके बाद फिर कार्यक्रम के समापन का वक्त हो जाएगा। आइए सुनते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

दोस्तों मोहम्मद रफी साहब के गाए इसी खूबसूरत से गीत के साथ अब आज का युवावाणी का सफर यहीं पे खत्म होता है। अनुमति दीजिए अशोक को इस वादे के साथ कि पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे युवा मित्रों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं स्टूडियो की घड़ी में 6:30 और 53 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुन रहे सभी श्रोताओं का नमस्कार आदाब। कहिए कैसे हैं आप। चलिए शाम के इस घड़ी को और भी खूबसूरत बनाते हैं कुछ शानदार नगमों के साथ। आगाज कर रहे हैं 1942 लव स्टोरी के इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे गाया कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने। आइए सुनते हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोता सुन रहे थे प्रेम कहानी फिल्म का युगल गीत, जिसे गाया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

खेतों से पर्वत पर आकर, खेतों से पर्वत पर आकर जीवन जोत गाले, जीवन जोत गाले। दुनिया है दो दिल का मेला, कुछ रोले कुछ गाले।

श्रोताओं, लता मंगेशकर के गाए गाइड फिल्म के इसे खूबसूरत गीत के साथ अब आज के फिल्म संगीत का ये सफर यहीं पे खत्म होता है। अनुमति दीजिए अशोक को, नमस्ते।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 6:55 हो चुके हैं। अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से होगा, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल के आज के अंकों। तो कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: हर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए हुआ एमओयू, मुख्यमंत्री ने कहा स्थानीय प्रतिभा तराशने में मिलेगी मदद। जेपीएससी में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यालय का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन, मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने पर दिया गया जोर। रांची में सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में मानव संसाधन कॉन्क्लेव का आयोजन, कार्य क्षमता बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि पर मंथन। और रांची में डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए निःशुल्क टिकटों की हुई बिक्री, खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह, मुख्यमंत्री 26 जुलाई को टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में आज झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में साउंड डिजाइनिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, सिनेमेटोग्राफी, निर्देशन और फिल्म प्रोडक्शन सहित विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा तथा फिल्म, ओटीटी और डिजिटल कॉन्टेंट के क्षेत्र में नए रोजगार और अवसर उपलब्ध होंगे।
1: इस राज्य के सामान्य आम लोगों के अंदर किसी न किसी तरह का कलाकार छुपा पड़ा है। सोशल मीडिया और विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से कई सारे कलाकारों के कई गतिविधियों को देख रहे हैं। कई कारणों से शायद वो छुपा कलाकार बाहर नहीं आ पाता है। आज इस संस्था के माध्यम से और सत्यजीत रे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के सहयोग से उन कलाकारों को भी ढूंढा जाएगा, अब तरासा भी जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ दिनों से विभागवार समीक्षा कर विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कामकाज की समीक्षा की। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समर्पण की भावना से काम करने का निर्देश दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू के नेतृत्व में आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री साहू ने कहा कि राज्य में सत्ता में बैठी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा सहित सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आज रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नौकरियां बेची जा रही हैं और प्रतिभा के साथ अन्याय हो रहा है। इस मौके पर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ली गई जेपीएससी की सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की।
2: झारखंड में हमारा डिमांड ये है कि 14वीं जेपीएससी रद्द हो। हम जो बार बार हम डिमांड कर रहे थे, एजेंसी के माध्यम से गड़बड़ियां चल रही है, वो चीज को समझना चाहिए। सारा एग्जाम को रद्द हो परीक्षा। आज वो सीन आया है, आज हम बंसी में लड़ाई घर में तड़को को लाया है।
0: जेपीएससी अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद आजसू पार्टी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने रांची में प्रेस वार्ता में 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए। श्री महतो ने इस मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की ताकि अनियमितता उजागर हो सके।
3: हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है और जेपीएससी से जो जुड़े हुए हैं, जिनकी संलिप्तता है, तो ईडी और सीबीआई की जांच पूरे प्रकरण में हो और टीडीपीएल कंपनी के साथ जो करोड़ों का लेन देन हुआ है, उसका भी जांच इसमें निष्पक्ष रूप से हो।
0: अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार जेपीएससी ने

0: 25 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाली सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर इससे संबंधित सूचना प्रकाशित कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आज राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर BLO और BLA2 की तीसरी संयुक्त बैठक तथा चुनाव पाठशाला आयोजित की गई। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने हजारीबाग के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची के सत्यापन और ASDD सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में मतदाता सूची को त्रुटि रहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाने के लिए BLO, BLA2 और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर बल दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना और अपात्र व्यक्तियों को सूची से बाहर रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए प्रतिभाशाली बच्चों का नामांकन जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में कहा कि हमारे देश के बच्चे केवल भविष्य नहीं बल्कि आज के भारत की प्रेरक शक्ति हैं।
1: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए मैं देश के सभी माता पिता, नागरिकों और संस्थाओं से आग्रह करती हूं कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा बालक या बालिका है जिसने वीरता, कला एवं संस्कृति अथवा खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है तो उनके उत्कृष्ट कार्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए अवश्य नामित करें।
0: भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी आज सरायकेला खरसावा में कोल्हान के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। मौके पर श्री बाउरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कथित रूप से गिरती कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार पर जनहित के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया।
2: जो संस्था या जो अध्यापन केंद्र मानव निर्माण की जगह बम निर्माण केंद्र बनाए तो उसपे तो अंकुश लगना ही चाहिए। उनके कार्यों का निश्चित रूप से मूल्यांकन करके राज्य सरकार को उसपे जो है रोक लगाने का काम करना। UCC 100% जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी UCC झारखंड में भी लागू होगा, ये हमारा कमिटमेंट है जनता।
0: रांची के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल अंतर्गत MTI बिल्डिंग में आज से 2 दिवसीय मानव संसाधन कॉन्क्लेव शुरू हुआ। सम्मेलन में देश भर के नवरत्न PSU और विभिन्न कंपनियों के HR हेड हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर कंपनियों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादन में वृद्धि जैसे विषयों पर मंथन हो रहा है।
3: HR का कंक्लेव जो सेल आयोजित करता है हर साल, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं और इसी में छोटा सा कंपटीशन भी होता है जहाँ पे कि एक थीम दिया जाता है। जैसे इस बार का थीम है HR एज एन आर्किटेक्ट फॉर बिल्डिंग परफॉर्मेंस कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस थीम पे अलग अलग टीम अपने प्रेजेंटेशन सामने रखते हैं और उसके अच्छे पॉइंट्स को हम जाके वापस अपने प्लांट में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।
0: रांची में 26 जुलाई से डोरंट कप के मैच खेले जाएंगे जिसे लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। मोराबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में निःशुल्क टिकटों की बिक्री शुरू हुई। निःशुल्क टिकट मिलने पर खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त किया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डोरंट कप के रांची चरण के टूर्नामेंट का 26 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन मुकाबले के बाद आने वाले मैचों के लिए 27 जुलाई से अलग अलग मैचों के अनुसार दर्शकों को टिकट दी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए हुआ MOU। मुख्यमंत्री ने कहा स्थानीय प्रतिभा तराशने में मिलेगी मदद। JPSC में कथित अनियमितताओं के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कार्यालय का किया घेराव। जमकर की नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर चुनाव पाठशाला का आयोजन, मतदाता सूची को त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाने पर दिया गया जोर। रांची में सेल प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में मानव संसाधन कॉन्क्लेव का आयोजन, कार्यक्षमता बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि पर मंथन। और रांची में डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए निःशुल्क टिकटों की हुई बिक्री, खेल प्रेमियों में दिखा उत्साह। मुख्यमंत्री 26 जुलाई को टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: आस्था और श्रद्धा का प्रतीक पूरे एक महीना तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है 31 जुलाई 2026 से। इस बार मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह तैयार है। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसरी उपायुक्त SP के साथ लगातार बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि इस बार मेले में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था रहेगी। मेला परिसर में चिकित्सकों के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था कर दी गई है।
2: हर साल के बाद इस साल हम लोग बेहतर करेंगे, कोई दुर्घटना ना हो। हमने निर्देश भी दिया है कि अभी जो समीक्षा बैठक हुआ इसको लेकर 228 डॉक्टर को हमने रिपोर्ट किया है। ANM, GNM, 12 मेडिकल स्टाफ, हमारे तमाम एक्सपर्ट लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लगभग 40 केंद्र हमने बनाए और सब जगह डॉक्टर रहेंगे। सदर हॉस्पिटल में 100 बेड इसलिए हमने रावली के लिए किया है। एम्स में हम लोगों ने 50 बेड का हमने किया है। आने जाने की सुविधा हमने दिया है, हर जगह हमारा एम्बुलेंस होगा।
1: वहीं दूसरी तरफ रेल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। आसनसोल रेल मंडल के DRM संग्रह मौर्य ने बताया कि अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जा रहे हैं, साथ ही रेल व्यवस्था में भी विस्तार किया गया है। कई जोड़ी ट्रेनें भी अधिक चलाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को भी बेहतर व्यवस्था मिले।
3: मोस्टली पैदल यात्री जो दर्शनार्थी होते हैं, दर्शन करके जो वापस जाते हैं अपने घर, को रेलवे से जाते हैं। और जो सर्कुलेशन प्लान है वो प्रॉपरली करेंगे, कोई क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना रहे। देन यहाँ पे मैनिंग भी होगी RPF और GRP के जवान सिक्योरिटी वगैरह इंश्योर कर सके। कंट्रोल रूम्स खुलेंगे यहाँ पे, 4 hours मॉनिटर करेंगे लोगों का मूवमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे।
1: पूरे मेला के दौरान अगर बिजली व्यवस्था ठीक ना हो तो सारा मेला व्यवधान में साबित हो जाएगा। ऐसे में बिजली व्यवस्था को लेकर भी जीरो कट का संकल्प लिया गया है। बिजली विभाग के महाप्रबंधक परितोष सिन्हा के अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि किसी भी फॉल्ट को तुरंत ठीक किया जा सके। साथ ही कई छोटे छोटे काउंटर भी बनाए गए हैं जहाँ बिजली कर्मी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे।
4: श्रावणी मेला का सारा तैयारी चल रहा है बिजली विभाग का, देवघर बासुकीनाथ में टेम्पोरी कनेक्शन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। कवरिया पथ में मंदिर के आसपास अभी मार्केट एरिया में सभी जगह इसे कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। सारे सब स्टेशन का मेंटेनेंस किया गया है, फीडरों का भी मेंटेनेंस किया गया है। श्रावणी मेला में हम लोग 52 जगहों पर कंट्रोल रूम में जगह रहेगा, छोटा छोटा कंट्रोल रूम होगा जहाँ से कुछ आपात स्थिति में वहाँ सभी जगह तीनों शिफ्ट में आदमी कार्यरत रहेंगे।
1: वहीं इस बार श्रावणी मेले के दौरान शीघ्र दर्शनम और VIP पूजा के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंदिर के धर्म निरीक्षण पंडा मके महामंत्री निर्मल झा ने बताया कि शीघ्र दर्शन की राशि में बढ़ोतरी की गई है और इस बार 600 रुपया शीघ्र दर्शन की राशि लगेगी।
5: 600 होगा, अभी 300 चल रहा है। शीघ्र दर्शनम रविवार और सोमवार को बंद रहेगा कूपन, और कूपन का चार्ज 600 रुपया रहेगा।
1: श्रद्धा सुविधा और सुरक्षा के साथ पूरा देवघर से लेकर दुमका बासुकीनाथ तैयार है। श्रावणी मेला 31 जुलाई को शुरू होने वाली है। बम बम हर हर महादेव के नारों के साथ पूरा देवघर गुंजयमान हो जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
0: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: ये आकाशवाणी।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, 7:15 और 33 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम झनकार, बस कुछ ही बोलो।

कार्यक्रम झनकार आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। श्रोताओं, अब तक अपने दो फिल्मों के गीत सुने। अभी आप सुन रहे थे 102 नोट आउट फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज थी, और उसके पहले अपने सिया आपने सुना 13 3 स्टोरीज फिल्म का गीत। आवाजें थी क्लिंटन सिरिचियो और बाइंका गोमैन का। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं आक्रमण फिल्म का यह खूबसूरत संगीत, आवाज सुरों के सरताज किशोर कुमार का।

श्रोता साथियों, किशोर कुमार के गाए आक्रमण फिल्म के इसी खूबसूरत गीत के साथ अब आज का झनकार कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार। श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम झनकार, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 7:31 और 15 सेकेंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

जब जब फूल खिले। जी हाँ श्रोताओ, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लव स्टोरी फिल्म का गीत, आवाज अमित कुमार की है।

0: श्रोताओं, लव स्टोरी फिल्म के गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार और आशा भोसले के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म एक दूजे के लिए का ये दिलकश तराना। कार्यक्रम है ऑल टाइम हिट्स।
1: दीवाना लगता है गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता है
2: लड़की।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए एक दूजे के लिए फिल्म के इसी गीत के साथ आवाज का ऑल टाइम हिट्स कार्यक्रम समाप्त होता है। अनुमति दीजिए, शुक को नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कानूनी सलाह, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में 7:45 हो चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम कानूनी सलाह का। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको हम सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता, विषय है RTI कानून की उपयोगिता और चुनौतियां। भेंटवार्ताकार हैं अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप एवं अधिवक्ता मनवीत कुमार अकेला, और भेंट करता है सैयद मासूम अहमद। आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बाद अलग अलग राज्यों में इसके तहत राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। इसी क्रम में झारखंड में भी झारखंड राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। सूचना का अधिकार का क्या महत्व है और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं समाज सेवी और सूचना अधिकार कार्यकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप। राहुल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
0: सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो राज्य सूचना आयोग है, इसके गठन का क्या उद्देश्य रहा है?
1: सूचना आयोग का गठन का उद्देश्य रहा है कि राज्य में सूचना या सरकार की कामकाजों की पारदर्शिता बनी रहे, लोग हर चीज की जानकारी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हो, जो उनसे जुड़े हुए हो या जनहित से जुड़े हुए हो, उन मामलाओं को जानकारी ली जा सके सुगमतापूर्वक। अगर हम जन सूचना पदाधिकारी के माध्यम से सूचना प्राप्त करते हैं, अगर वह सूचना समय पर नहीं देते हैं, उनके द्वारा निर्धारित 30 दिनों का समय होता है, नहीं देते हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट अपील लोग कर सकते हैं। फर्स्ट अपील करने का भी 30 दिन का समय होता है। जब उस 30 दिन अर्थात 60वें दिन तक जब जवाब नहीं आता है, तब फिर हम राज्य सूचना आयोग तक पहुंचते हैं। प्रथम जन सूचना पदाधिकारी, फिर राज्य सूचना आयोग के पास हम पहुँच करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सूचना आयोग रहने से सामान्यतः देखा गया है कार्यालयों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा ये भय होता है कि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रथम अपील और द्वितीय अपील कर राज्य सूचना आयोग तक पहुंच सकता है, और ऐसे में उस भय से सूचनाएं समय पर मिल जाती है।
0: आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जमीनी स्तर पर आरटीआई कानून को लागू करने में राज्य सूचना आयोग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सवाल ये उठता है कि आम नागरिकों के लिए ये सूचना अधिकार क्यों जरूरी है?
1: आम नागरिकों के लिए देखा जाता है कि बहुतों की समस्याएं, एक सामान्य रूप से, एकदम हम ग्रामीण रूप से देख सकते हैं कि बहुतों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनका आवेदन पड़ा हुआ है, वह जानना चाहते हैं आवश्यकताएं है, उनके लिए वही बहुत महत्वपूर्ण है। वह आवेदन दे करके अपने संबंधित पदाधिकारी से अपनी आवेदन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो अगर लंबित है बेवजह, तो उसके लिए अपने वरीय पदाधिकारी तक शिकायत कर सकते हैं।
0: राहुल जी, सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने में ये आयोग कितना सहायक है?
1: विगत सूचना अधिकार अधिनियम आने के बाद आपको देखा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ों की पारदर्शिता आई है। सरकारी पदाधिकारी, पहले जब ये सूचना आयोग नहीं थे या आयोग लागू नहीं था, उसके पहले पदाधिकारी बोलते थे ये हम क्यों देंगे, आप हम सरकारी है, गोपनीय बातों का करके ये टाल देते थे। लेकिन जब से ये सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ है, तब से सूचनाएं मिल रही हैं, और इसमें भ्रष्टाचार से संबंधित, उनके काम की गतिविधि से संबंधित जानकारियां लोगों को सार्वजनिक हो रहा है, और अगर सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो वह अपील पदाधिकारी के माध्यम से दंड भी होने का, आर्थिक दंड तक का प्रावधान है। इवन पदाधिकारी, सूचना पदाधिकारियों को कि ये कह सकते हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है आर्थिक, और उनको भय है दंडात्मक।
0: राहुल जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि राज्य सूचना आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां सामने हैं?
1: अभी झारखंड राज्य में लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से आपके सूचना आयुक्त नहीं रहे हैं, जिसके कारण इधर 5 वर्षों में देखा जाएगा सूचना प्राप्त करने वालों हताश हो गए हैं। जो भी व्यक्ति मांगना चाह रहे हैं, पदाधिकारी जान रहे हैं ये जाएंगे कहाँ, इनको मिलेगा तो है नहीं, आयोग तो है नहीं, बस थक हार करके अपील करता है, वो हार जाता है, वो आवेदन देने में थक जाता है, तो जाए तो कहाँ जाए, नेचुरली है वह थक हार जाते हैं। और इसका बेनिफिट जन सूचना पदाधिकारी या सरकारी कर्मी, प्रथम अपीले पदाधिकारी भरपूर उठाए हैं।
0: कहा जाता है कि जो ये आयोग गठित नहीं था इन वर्षों में, तो करीब 25,000 मामले लंबित हो गए थे।
1: निश्चित तौर पर 25,000 से ज्यादा ही होंगे, और बहुतों तो आवेदन देना ही छोड़ दिए। ये बहुत कम आंकड़ा है, अगर फ्लो रहता तो ये संख्याएं और भी अधिक होती। ये आयोग नहीं रहने के कारण लोग आवेदन देना छोड़ दिए और पदाधिकारी सूचना ही नहीं दे रहे। अगर देखा जाएगा आने वाले समय में आप आकलन कर सकते हैं कि सूचना मांगने वालों की भी संख्या बढ़ेगी, प्रथम अपील का भी बाढ़ आएगा, क्योंकि सारे के पास रुका। मेरा खुद का ही लगभग 2-4 ऐसे मामले हैं जो राज्य सूचना आयोग तक पहुंचेंगे। एक नगर निगम से ही रिलेटेड है, 1-2 है, सामान्य है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी मोटी चीजें दे सकते थे।
0: और आयोग के गठन को लेकर अंततः न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।
1: निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय अनेक बार आग्रह किया राज्य सरकार से, उसके परिणाम स्वरूप आज राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया हुई है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय पुनः पुरानी ढंग से संचालित होंगे और झारखंड राज्य के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
0: और इसी उम्मीद के बाद आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आमतौर पर और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस कानून को लेकर जागरूकता की कमी है, तो इसको लेकर क्या पहल होनी चाहिए?
1: निश्चित तौर पर सूचना अधिकार के बारे में अभी ग्रामीण क्षेत्र क्या शहर में भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ग्रामीण में तो और भी इसका अभाव है, कभी कभी राशन कार्ड हो गया या म्यूटेशन हो गया, बहुत छोटी छोटी उनका पेंशन हो गया, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे आपके लिए नहीं हो सकते हैं लेकिन उनके लिए है, और उसके लिए उनके पास कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। ऐसे में अगर उनकी सूचना अधिकार का ज्ञान हो, जानकारी हो, तो वह आवेदन दे करके अपनी जो भी आवेदन है, पेंशन से रिलेटेड हो, म्यूटेशन से रिलेटेड हो, जो भी हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड वो जानकारी हासिल कर सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं।
0: तो राहुल जी, हम सब उम्मीद करते हैं कि राज्य सूचना आयोग पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का लाभ लोगों को भरपूर मिल पाएगा। आपने कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज चर्चा की और लोगों तक इन बात को पहुंचेंगे कि राज्य सूचना आयोग पुनः गतिविधि में आ रहा है, पुनः उसी ऊर्जा उसी निष्ठा के साथ अपना आवेदन दें और आयोग तक पहुंच सकते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूरे राज्य में सरकारी कार्यालय वही पुरानी धर्रे पर सूचनाएं आदान प्रदान होंगी और लोगों तक सूचनाएं प्राप्त होगा।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, लंबे अंतराल के बाद झारखंड राज्य सूचना आयोग के 4 सदस्यों ने शपथ ले ली है और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जल्द ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भी हो जाएगी। हम सब आशा करते हैं कि जल्द ही आयोग पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित राज्य सूचना आयोग को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मनमीत कुमार अकेला। सबसे पहले मनमीत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो RTI कानून है उसको जमीनी स्तर पर लागू करने में राज्य आयोग की क्या भूमिका है?
2: धन्यवाद। RTI कानून को जमीनी स्तर पर लागू करने में सबसे पहले जो हमारे भूमिका है, 30 दिन में कोई भी जब सूचना हम मांगते हैं तो 30 दिन में उन्हें देना रहता है, और अगर 30 दिन में हमें सूचना विभाग से नहीं मिलती है तो हम उसके प्रथम अपील और द्वितीय अपील के पास जाते हैं। और अब झारखंड में जो रुकी हुई थी, हमें अच्छा आशा है कि अब इस पे हम लोग द्वितीय अपील और प्रथम अपील पे हम लोग अब जा सकते हैं।
0: आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम नागरिकों के लिए सूचना आयोग क्यों जरूरी है?
2: देखिए, आम नागरिकों को सूचना आयोग इसलिए जरूरी बन जाता है जब हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जहां हम रहते हैं वहां पर, चाहे वो राशन का क्षेत्र हो, मनरेगा हो, पेंशन की जानकारी हो, चाहे सरकारी कोई भी विभाग में, कोई भी भ्रष्टाचार जब हो रहा है, कोई भी उसकी सूचना हमको जानकारी चाहिए तो हम सूचना अधिकार के तहत ले सकते हैं। बिना आयोग के आरटीआई का अधिकार अधूरा रह जाता है, और आरटीआई जब हम कोई भी विभाग में डालते हैं तो उसमें सरकारी विभाग में कोई भी जानकारी के लिए हम यह आरटीआई का उपयोग करते हैं, और उसके लिए आयोग की होना बहुत जरूरी है।
0: विभागीय भ्रष्टाचार रोकने में आयोग की क्या भूमिका है?
2: देखिए, क्या है ना, भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत ही आरटीआई भूमिका अपना अदा करती है, क्योंकि जब विभाग से जब कोई काम करती है और वह भ्रष्टाचार होता है चाहे गलत तरीके से काम होता है, तो आम जनता का यह अधिकार है कि हम आरटीआई के तहत उससे सूचनाएं मांग सकते हैं। और जब हम कोई सूचना मांगते हैं तो विभाग पे ये डर बना रहता है कि हम कोई गलत करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आम नागरिक यह सूचना मांग के हमसे जानकारी ले सकती है, और अगर हम गलत करेंगे तो वह आयोग जाएगी, और आयोग जाने के बाद उस पर पेनल्टी, उस पर मुआवजा ऐसा बनता है, जिससे कि एक डर बना रहता है, भय बना रहता है।
0: मनमीत जी, एक बात ये आमतौर पर देखी जाती है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर आम जनता में उतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए, यही कारण है कि इसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो जागरूकता को लेकर क्या उपाय किया जाना चाहिए?
2: खास करके यह ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी रही है, क्योंकि एक तो वहाँ के आम जनता जो है आरटीआई के लिए आवेदन कैसे लिखना है यह नहीं जानते हैं, उसके साथ कितने रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का हम लगाते हैं वो जानकारी नहीं है, तो इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान एक हम लोग को चलाना चाहिए, और जनता को भी और सरकार को भी एक आरटीआई के लिए कैसे आवेदन करना है, ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, ऑफलाइन कैसे आवेदन करना है, और बहुत सारी जो जानकारियां हैं उसको समय समय पे हमारे पंचायत स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में, खास करके स्कूलों में कॉलेजों में ऐसा एक सेमिनार करके इस पे लिखने के लिए एक जागरूकता अभियान हम लोग चला सकते हैं, जिससे कि हम लोग आम जन आरटीआई के लिए आवेदन कर सके।
0: और सरकार और विभाग के स्तर से भी इस दिशा में पहल होनी चाहिए।
2: जरूर, सरकार के माध्यम से भी, विभाग के माध्यम से भी, और लीगल अवेयरनेस के माध्यम से भी, कॉलेजों में, स्कूलों में, चाहे आम जो जनता का जहां ब्लॉक में चाहे पंचायत में जो लगता है ग्राम सभा, वहां पर भी इस तरह का सभाएं करके उनको इस जागरूकता हम लोग को करना चाहिए, सरकारों को भी करनी चाहिए।
0: तो सूचना अधिकार अधिनियम और राज्य सूचना आयोग को लेकर अधिवक्ता मनमीत कुमार अकेला जी ने काफी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह हम लोग आगे जनता के साथ जुड़ते रहे, धन्यवाद।
3: श्रोताओं, कानूनी सलाह के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, आरटीआई कानून की उपयोगिता और चुनौतियां। भेंटवार्ता का अर्थ अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप एवं अधिवक्ता मनप्रीत कुमार अकेला, और भेंट करते थे सैयद मासूम अहमद। इसके साथ ही आवाज का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है, फिर 102.1 MHz पर। 8 बजने को है संसद मूवी, आज की गतिविधियों पर आधारित संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं युनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री टेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता,
खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी।
हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें, अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से

कार्यक्रम आपके चाहे सुन रहे तमाम संगीत प्रेमी श्रोताओं को अशोक का नमस्कार, आदाब, जोहार। श्रोताओं के ये कैसे हैं आप भाई? कुछ दिन पूर्व बारिश की आस में हम सब आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, लेकिन इधर दो तीन दिनों के अंदर अच्छी बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, तो लोगों में खुशी की लहर है। और जो खेतों में जिन्होंने बीज रोप दिए थे और उनमें दरार सी फट रही थी, दरार सी आ गई थी, तो उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इन वक्त पे बारिश ने अब उनके मनसूबों पर पानी नहीं फेरा है, बल्कि ये खुशी की लहर को फेर दिया है। जहां एक और किसान खुशी से झूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जल जमाव और नालियों के उचित देखभाल सालों भर न होने की वजह से लोग परेशान हैं। तो चलिए इन सब बातों पर

चर्चा होती रहेगी। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत है। श्रोताओं, आज है 22 जुलाई और आज के दिन सन 1923 में हमारे भारतीय सिनेमा के कर्णधार मुकेश साहब का जन्म हुआ था। तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ गीत शामिल हैं मुकेश साहब के भी, जिनकी फरमाइश हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। ऐसे खतों को हमने छांटकर बिल्कुल अलग रख दिया है, क्योंकि आज उनके गीतों को सुनवाने की बारी है उन सभी श्रोताओं का। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मेरा नाम जोकर फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जो फिल्म आया गया था राज कपूर साहब पर, और इसमें कुछ डायलॉग भी है, अंश भी हैं, मगर उसके डायलॉग चूंकि काफी लंबा है इसलिए कुछ अंश ही हम आपको सुनवा पाएंगे। मुकेश साहब के आवाज में एक खूबसूरत सा गीत सुनवाने के लिए आप सब श्रोताओं ने हमें खत भेजे हैं। आप हैं चेपाकला बड़का गांव से, बाबूलाल ठाकुर, साविया ठाकुर, त्रेश्वरी भर ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश आदर्श, जितेश अनुराधा रुक्मणी और प्रियंका दीपिका। ये खता है इंद्रपुरी चौक से दिलीप ठाकुर और अरविंद ठाकुर का। अम्बेडकर नगर खपरियावा से इसी गीत को सुनना चाहा है लखनदास बेबी कुमारी शनि कुमार एवं रोशनी कुमारी ने, और इसी गीत को सुनना चाहा है खपरियावा हजारीबाग से विकास उर्फ टोनी, कोनी, आशा, स्वीटी, अपूर्वा, अभिषेक और मोहित ने। तो लीजिए, आप सभी श्रोताओं के पसंद पर भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट या फिर मोबाइल सेट पर यह खूबसूरत सा गीत फिल्म मेरा नाम जोकर से।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
0: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

फर्ज। जी हां श्रोताओं, यह फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं, मुकेश साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को सुनवाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने हमें खत भेजे हैं। आप है मुनगा बगीचा हजारीबाग से विवेक कुमार सिन्हा और उनके परिवार के समस्त सदस्य। आप हैं पटेल नगर मालोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाचोरिया, गीता रानी जाचोरिया, गगनदीप जाचोरिया और बेबी आरजू जाचोरिया एवं गुड्डू। यह खत आया है खरसावां झारखंड हजारीबाग से शुक्रा नायक, मंजू नायक, जालेश्वर नायक, गौरव नायक और राकेश नायक। और ये खत है रसूलीगंज हजारीबाग से मोहम्मद गुलाम अली, मोहम्मद

श्रद्धामरी, पप्पू, छोटू और रोबोट का। आप सभी ने सुनना चाहा यह खूबसूरत सा गीत फिल्म फर से, आइए सुनवाते हैं।

कार्यक्रम फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी चाहत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से और मैं हूं इस कार्यक्रम का होस्ट अशोक। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत पेश कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं मिलन फिल्म से, आवाज एक बार फिर से मुकेश साहब की है। इस गीत को सुनवाने के लिए आप सभी ने हमें खत भेजे हैं। आप हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान पोत्रा से आप हैं मुस्तबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कठनकर और वैशाली कठनकर, सदाबहार श्रोता संघ महोद जिला बरहानपुर मध्य प्रदेश से हमारी यशोदा है, मुसर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज, रोजमीन तैमूर और भैया तड़वी। तब सभी श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश की है, आइए सुनते हैं।

और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं इन श्रोताओं की पसंद। मालीटोला खिरगांव से आप है वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत और ऋषि एवं राहुल। आप है झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू, उनके परिवार के समस्त सदस्य। और ये खत आया है भंडार शिवानी कोंडगांव छत्तीसगढ़ से सुभाष चक्रवर्ती, श्रीमती कविता चक्रधारी और मुस्कान अनुष्का चक्रधारी। शालर पहलगाम कश्मीर से आप हैं पीरजादा महरुजुद्दीन कैसरदीन और नजमदीन। भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से आप हैं अशोक श्याम कुमार, दीपक श्याम कुंवर और श्रीमती प्रमीला और ज्योति श्याम कुंवर। और आप हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। तो आप सभी ने सुनना चाहा है, बड़ा ही खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश साहब का गाया एकलौता गीत भारतीय सिनेमा के इतिहास में फिल्म अमर अकबर एंथोनी से। आइए सुनते हैं।

0: अश्वथा इसी खूबसूरत गीत के साथ, जिसे हमने लिया था अमर अकबर एंथोनी फिल्म से, आवाजें थी किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर और मुकेश साहब का। अब आपकी चाहत का सफर यहीं पे खत्म होता है। अनुमति जी अशोक को फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। नमस्कार आपका। आज का ये सफर खूबसूरत और सुरीला हो, इन्हीं शब्दों के साथ अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
1: छुपाए रखा, शोला दबाए रखा।

0: श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम में आपकी चाहत। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ज पर। 8:45 होने को हैं। अब समाचार संध्या और न्यूज 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से होगा बस थोड़ी देर में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और

0: पुलिस से चार सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही तीन बार और राज्यसभा की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला

0: ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावासकेस से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिडकैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आन मिलो शाम सवरे।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।

0: रहेंगे।
1: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
2: मैंने

सपने। मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। 10वीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों आए हैं। दरअसल यहाँ हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ गाइए।

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहाँ हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए।

ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना न गुन

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं 10 बज चुके हैं, वक्त चला है कार्यक्रम रजनीगंधा का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंध सुन रहे सभी श्रोताओं को अशोक का बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके हाल चाल। श्रोताओं, आज बड़ा ही खास दिन है भारतीय सिनेमा के लिए। जी हाँ, आज का हर रेडियो स्टेशन में गूंज रहा है मुकेश साहब के तराने, मुकेश साहब के रंग नगमे। मुकेश साहब के गीत न सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि उनके गीत में वो शादगी है, वो दीवानगी है और वो ताकत है जो हर इंसान के सीधे दिलों तक पहुंच जाया करता है। जी हाँ, ऐसे थे हमारे मुकेश साहब। आज के ही दिन यानी 22 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ था। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग की अगर बात कहें तो पार्श्व गायक मुकेश का नाम उसमें अव्वल है। वो दर्द के सहनशाह के भी नाम से जाने जाते हैं। भावुक और आत्मा को छू लेने वाली आवाज अगर थी तो सिर्फ

पर सिर्फ मुकेश साहब में थी। मुकेश साहब कई सितारों की आवाज बने। जी हां, अभिनेता राज कपूर की बात करें या फिर मनोज कुमार की बात करें, दिलीप साहब की बात करें या फिर राजेश खन्ना यानी काका की बात करें। कुछ गीतों के बाद वापस आते हैं और फिर मुकेश साहब से जुड़ी बातों को आत्मसात करते हैं आपके साथ।

दोस्तों मुकेश साहब जब अपनी गायकी की शुरुआत इन्होंने किया तो वो भी उस समय के जाने माने पार्श्व गायक जो कि भारतीय सिनेमा में बड़ी ही जबरदस्त पकड़ बना ली थी। हम बात कर रहे हैं कुंदनलाल सहगल की। इनके दीवाने थे कई चाहने वाले और उन चाहने वालों में भी मुकेश साहब भी इनके दीवाने थे। इन्हीं के गाने सुनकर वो एक पार्श्व गायक बनने का सपना संजोया और मुंबई आ गए। और आरंभ के कुछ गीतों में उनके ही अंश देखने को मिलते हैं, जैसे कि दिल जलता है तो जलने दे। कहा यह जाता है कि यह गीत जब सहगल साहब तक पहुंची तो उन्होंने मुकेश साहब को बुलाया और कहा कि ये गीत तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ही गाया है, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कब गाया। तो उन्होंने कहा, मुकेश साहब ने कि सर ये गीत तो मैंने गाया है। उन्होंने उनके फिर पीठ थपथपाई, गले से लगा ली और कहा कि बस तुम यूं ही गाते रहो। और मुकेश साहब बस यूं ही गाते चले गए और गाते चले गए। और फिर देखिए, उन्होंने जब सहगल साहब की आवाज़ को दरकिनार करके अपनी आवाज में गीतों को गाना शुरू किया तो फिर वो मकबूलियत और वो तारीफ पाई कि भारतीय सिनेमा के अग्रणी गायकों की श्रेणी में उनका नाम लिखा जाने लगा। कुछ गीतों के बाद फिर वापस आते हैं।

दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार की बात की जाए तो पुरस्कार कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस गायक को पुरस्कार मिले वही बेहतर गायक होता है, लेकिन फिर भी मुकेश साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जी हाँ, रजनीगंधा फिल्म के लिए कई बार यूं ही देखा है, इस गीत के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। और ये एक ऐसे गायक थे, पार्श्व गायक थे, जो भारत ही नहीं सोवियत संघ यानी रूस समेत दुनिया भर में अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज किया।

दोस्तों, इतने कम समय में और इतने बेशुमार गीत के बादशाह मुकेश साहब पर कार्यक्रम करना बहुत ही टफ वर्क है। फिर भी हमने कोशिश किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा गीतों को सुनवाएं और मुकेश साहब से जुड़ी बातों से रूबरू करवाएं। आवारा श्री 420 संगम आनंद मुकेश और कभी कभी जैसी फिल्मों के गीतों को मुकेश साहब ने अमर बनाया। प्रसिद्ध गीत किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, जीना यहाँ मरना यहाँ, सुहाना सफर ये मौसम हसी सब कुछ सीखा हमने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, ये कुछ गीतों के बोल थे जिन्होंने जिन गीतों को गाकर मुकेश साहब ने अमर बना दिया। जी हाँ, मुकेश साहब के गीत जब कभी भी आप गुनगुनाएंगे अकेले में तो उसमें आपको अपनत्व मिलेगा और ऐसा लगेगा कि मुकेश साहब हमारे इर्द गिर्द ही हैं और हमें जीवन के लिए कुछ गहरी सीख प्रदान कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, छोड़े जा रहे हैं कुछ और लोकप्रिय गीतों के साथ मुखड़ों के रूप में। आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त अशोक को अनुमति दीजिए रजनीगंधा के इस सफर से। नमस्ते, शुभरात्रि।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी का। ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 10:32 हो चुके हैं। लीजिए वक्त तो चला है कार्यक्रम एक फिल्म से। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं 1969 में प्रदर्शित नासिर हुसैन साहब की फिल्म प्यार का मौसम के खूबसूरत गीतों का। जी हाँ, इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे शशि कपूर, आशा परेख और निरूपा रॉय।

फिल्म में शानदार गीत संगीत थे और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। आइए सुनते हैं इसके शानदार गीतों को।

आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। श्रोताओं, आज की फिल्म है 1969 में यानी कि 1969 में प्रदर्शित नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म प्यार का मौसम के कुछ सुरीले नगमों को। फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे शशि कपूर, आशा परेख और निरूपा रॉय। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की थी। लगभग गीतों को इन्होंने ही गाया था। आइए कुछ और गीतों का लुत्फ उठाते हैं।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और संसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय

0: शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tool to serve their own political interests.
2: और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: इट इज डीपली अनफॉर्चुनेट।